0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC Radio.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 6 बजे हैं। संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे आशना, नमस्कार।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती विना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। करण एतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकाला गया कि करण एतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमारे रहने वाले 31 साल के करण एतवा शनिवार 27 जून की शाम को सुरीनाम में सड़क किनारे मृत पाए गए। इस मामले की जांच अब सुया की सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे

0: परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद किया गया। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों के बाद उससे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। विदेश की खबरों में फ्रांस में ये दुखद घटना। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। ये विमान जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि कुछ पीड़ितों के परिजन भी दुर्घटना के समय या फील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप्स को देखने आए हुए थे। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात तक को भी बादल घिर रहेंगे। पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लाटो पर कुछ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा। इसी के साथ
1: RM3 Radio.

इज़्ज़त और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का बहाना मिल गया। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। बाग़ौर व अदब समात

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलमात की स्याही के बराबर. बहवाला मुस्लिम शरीफ. ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म से हमने सुबह की और तेरे हुक्म से हमने शाम की और तेरे हुक्म से हम जीते और तेरे हुक्म से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ़ पलट कर जाना है. बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ़.

अल्लाह पाक है और उसी की तारीफ है। ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे और खुले के जानने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का रब और उसका मालिक है। हम तेरी पनाह चाहते हैं अपने नफ्स के शर से और शैतान के और उसके शिर्क के शर से।

अल्लाह के नाम से वो ज़ात जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़मीन में और आसमान में नुकसान नहीं दे सकती और वो सुनने वाला जानने वाला है। बहवाला अबू दाऊद। हमने सुबह की और तमाम आलम ने सुबह की अल्लाह के लिए और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ हमारे रब, हम तुझसे आज के दिन की और जो उसके बाद है उसकी भलाई मांगते हैं और हम तेरी पनाह चाहते हैं आज के दिन और जो उसके बाद है उसकी बुराई से। और ऐ हमारे रब, हम तेरी पनाह चाहते हैं सुस्ती और बदतरीन बुढ़ापे से। ऐ हमारे रब, हम तेरी पनाह चाहते हैं आग के अजाब से और कब्र के अजाब से। बहवाला से।

हम अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की पनाह में आते हैं उस चीज़ के शर से जो हम महसूस करते हैं और जिसका हमको अंदेशा है। ऐ अल्लाह, इस साल को हमारे ऊपर अमन और ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ और शैतान से बचाओ और रहमान की रजामंदी के साथ दाखिल फरमा। आमीन।

0: नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं हूं पूनम, आपके साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर, और आप सबका दिल का शो भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत करती हूं। भक्तों, आज का सफर शुरू होगा गणपति बप्पा से, फिर चलेंगे हम महादेव की और श्री राम जी की तरफ, और आखिरी में मिलेंगे बजरंग बली से, जो भक्ति और शक्ति दोनों को एक साथ सिखाते हैं। उनकी पावर ऐसी है, कहते हैं कि जहाँ पर वो पहाड़ उठा सकते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कण भी उठा सकते हैं हाथ में, और उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही उन्होंने किया। और हम अभी आप चाहेंगे, आप सब भी जो भी इस समय भक्ति में शक्ति से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, बस अपनी पावर उतनी रखें कि आप समझ सकें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, पावरफुल हैं, और आपकी जो भक्ति है उसमें कितना प्रेम है। अगर प्रेम होगा तो बस सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो सांस लो और दिल से जुड़ जाओ अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति के साथ।
1: RM3 रेडियो

भक्तो, 11:04 हो चुके हैं सुबह के। हम बात कर रहे थे अपनी भक्ति में शक्ति प्रोग्राम की। गणपति बप्पा के बारे में एक छोटी सी बात कही जाती है, जब वेद व्यास जी ने महाभारत महापुराण लिखा तो जब लिखने लगे तो उन्होंने कहा कि बीच में मत रुकना गणपति, गणेश कभी मत रुकना, मैं जो बोलता जाऊंगा तुम लिखते जाना। और गणपति बप्पा ने भी एक ही बात की, जी आप बोलते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। उन्होंने कहा रुकना मत, और गणपति बप्पा ने एक पल भी नहीं रुका। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। जब उनकी कलम टूटी तो उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि आपने रुकना नहीं है तो क्या करते वो। उन्होंने देखा कि उनका दांत बहुत बड़ा है, उन्होंने उसी पल वो दांत तोड़ दिया। जैसे

0: हम आज पेन के अंदर इंक डालते हैं, उन्होंने उसके अंदर काली स्याही डाली यानी कि इंक डाली और लिखते गए। यही होती है कला। और लिखते लिखते आज वो बनी महाभारत, जहाँ पे कहीं इतने सालों से उसमें कोई कुछ कमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि गणपति बाप्पा रुके ही नहीं।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: भक्तो, एक बहुत प्यारी बात है। जब श्री राम जी लंका जाने से पहले समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले रेत से शिवलिंग बनाया और महादेव की पूजा की। सोचो भक्तो, खुद भगवान होकर भी राम जी ने विनम्रता दिखाई। उन्होंने सिखाया, बड़ी जीत से पहले सिर झुकाना मत भूलो। और महादेव, उन्होंने खुश होकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति छोटी नहीं होती, बस सिर्फ साथ जुड़ना होता है उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भक्तो, हनुमान जी के सीने में जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि राम जी कहाँ हैं तुम्हारे दिल में, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और अंदर राम और सीता का स्वरूप दिखाया। भक्तो, यही भक्ति है, यही शक्ति के का भी असली मतलब यही है। जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि वो शक्ति बन जाए। हनुमान जी अकेले नहीं समुद्र पार कर गए, पहाड़ उठा लिया, सब कुछ सिर्फ राम जी के नाम पर। तो जुड़ते हैं प्रभु राम के साथ।

0: RM3 Radio.
1: भक्तों, आज हमने सफर किया गणपति बप्पा से, महादेव और राम जी की विनम्रता से और हनुमान जी की अटूट भक्ति से। उम्मीद है आज की भक्ति में शक्ति की थोड़ी सी शक्ति आपको ज़रूर मिली होगी। तो आपको बस अपने साथ जुड़ना है, अपने प्रभु से जुड़ना है, RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ना है। मेरे बाद आप सुन पाएंगे चाइनीज़ प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत प्रणाम।

所播放的歌曲有陈奕迅《夕阳无限好》、《遥远的他》、《与我常在月球上的人》。希望在这30分钟的节目中有你喜欢的歌曲。

0: चकिया टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। ये सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम के साथ वहाँ इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद

0: से सेशल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मानानारा नोड में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मालागासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों बाद उसे मलागासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है। विदेश समाचारों में फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफाना बाफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमंती रिदोय पैराशी नाम रतन और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्म रिदोय के मकान महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लेव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रा रोड लेस्पेरांस कॉटे मिलितिया में 39 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नौसिमुलु जो क्रिश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नौसिमुलु के मकान रॉय रोड लेस्पेरांस कॉटे मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉबिन्सन नंबर दो क्यूपिप में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन ओबिलक जो माहेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:30 उनके मकान रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। रा रोड आल्बियो में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अहिल्या काली जो चादों के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे सुचित दुखिया के मकान रा रोड आल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: You're listening to RM3 Radio. Man.

ना सफर सुहाना सफर दिन के 12:10 हुए हैं। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आप ही के प्रोग्राम में यानी RM2 रेडियो मनोरंजन पर, जहां पर मैं वेदिता आपका स्वागत करती हूं। आप मुझे बताओ आप कैसे हो, कहां से हमें सुन रहे हो, एंड जितने

0: लोग हमारी टिकटॉक रेडियो मनोरंजन की टिकटॉक लाइव से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमें दुनिया के किस कोने से सुन रहे हो। आपका हम दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम, आपका प्रोग्राम में स्वागत है रेडियो मनोरंजन, जहां पर यहां पर सुहाना सफर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। खूबसूरत पुराने जो गाने हैं वो लेकर हम आए हैं आपके लिए। तो चलिए, गीतों का ये जो सफ़र है इसको हम आगे ले चलेंगे और साथ ही साथ आपके जो मैसेजेस हैं उनको भी पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे। आपके कुछ मैसेजेस आए, इससे पहले कि मैं टिकटॉक पे आपके मैसेजेस खो दूं, चलो यहां पर आपको हेलो कह देती हूं। दीप्ति गंदावरी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप, हाई ट्रैवल कैसे हो, नमस्ते एजे, लवना हाय कहती हैं, आशा फकीर पीछे काफ़े से, उनके लिए गाना डेफिनेटली, और साथ ही साथ यहां पर नेक्स्ट गाना होगा उन तमाम लिसनर्स के लिए जो अभी गाड़ी चला रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। तो चलो, यहाँ पर एजे कहते हैं कि हम धरती से आपको सुन रहे हैं, मैं क्या मार्स से प्रोग्राम कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम साथ में हैं तो साथ साथ रहेंगे। आप दुनिया के कोई भी प्राणी हो, अगर हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी हो तो आपका वेलकम है।
1: You're listening RM Free Radio.

0: भाई यहाँ पर हम आए हैं तो दो बातें तो करके नहीं जाएंगी, हमारी तो बातें बहुत ज्यादा होती है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर
0: भाई अगर हम मिनिमम बात करना चाहें तो हेलो हाय बाय बाय होगा कम से

0: कम हेलो हाय और बाय के साथ बाय भी तो होना चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बात करने आए हैं आपके साथ। आप साथ अगर दो और अगर आप में पेशेंस है मुझे सुनने की तो थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर एक कॉल आया है, इनसे मिल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो वेदिका जी।
0: हेलो जी, कौन है जी?
1: मैं वीना हूँ।
0: वीना वीना वीना, कैसे हो वीना जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: एकदम मस्त जबरदस्त, मंडे में मन लग गया बस।
1: यहाँ तो नुबरपास में ठंड के मारे तो हमारा आज जम गया है।
0: देखो, आपको गर्मी पसंद है या सर्दी पसंद है?
1: मुझे सर्दी पसंद है।
0: तो फिर कंप्लेन क्यों कर रहे हो? अच्छा देखो, सर्दी है ना तो गर्मा गर्म खाना खाओ, अच्छे अच्छे गर्म गर्म कपड़े पहनो और फिर उसके बाद घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। पता है ठंड उनको लगती है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका जिनकी बॉडी जो होती है ना हीट पैदा नहीं करता, क्योंकि क्या करते हैं आप हमेशा कुछ ना कुछ कंबल वंबल ओढ़ के बैठे रहते हो, तो बॉडी में जब तक हीट पैदा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, या तो फिर कोई गाना लगा दो, डांस कर लो, वो लगा दो, मुन्नी बदनाम हुई ये वाला लगाइयो, महबूबा हो महबूबा, ऐसे लगा दो, फिर पूरी बॉडी जो है ना हिल जाएगी।
1: हैं? मैं एक फरमाइश करना चाहती हूँ।
0: अभी देखो, अभी पूरा अभी दिल तोड़ने वाली गाने मांगे, बोलो।
1: नहीं नहीं नहीं, दिल तोड़ने वाली नहीं।
0: अच्छा बताओ तो।
1: मैं प्यासा सावन।
0: प्यासा सावन
1: जी, लता मंगेशकर का गाना है, तेरा साथ है तो।
0: तेरा साथ है
1: तो। जी, जी, जी, जी।
0: ये गाना मेरे लिए है, मेरे लिए गाना। हेलो, कट गया फोन, कट गया, देखा जवाब भी नहीं दिया, चली गई।
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।

सुहाना सफर। सुहाना सफर आप ही का प्रोग्राम है जहां पर हम पुराने गाने चलाते हैं। वैसे नए गाने की काफी सारी फरमाइशें आती हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा प्रोग्राम जो है वो पुराने गीतों का है, यहां सिर्फ पुराने गाने चलते हैं। यहां पर ललिता, पिया कुमारी, साथ में रचना जो कि मोहताज ब्लॉन्च से हैं, उनके लिए गाना होगा। हमारे साथ जुड़ी हैं आरती, बबीता, मिस्टर नूरुद्दीन फ्रॉम फ्रांस, धनुष बाबना, अलीशा, मंजुलिका, विमला, करुणा दोमा, वीना, एंड साथ में है शिरीन रामजोल, जितेंद्र दुनवा, शाहिद इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान, उनके दोस्त मिर्जा फैजल के लिए, नीलिमा, दीवीना, दीवीना की तरफ से उनके प्यार, प्रणन के नाम, और साथ में फिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए भी गाना होगा। दिनू मोहिनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनके लिए गाना हम ज़रूर डेडिकेट करना चाहेंगे। और साथ ही साथ कहाँ पर गाना होगा, कविता जी के लिए जो दिफ़े से हमें याद करी हैं, कहते हैं अभी बेलिया मैं हूँ, काम कर रही हूँ और आपको सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच। जगरुदानी गुडलैंड से साथ दे रहे हैं, इंदिरा नमस्ते, ज्योति चमन गुड मॉर्निंग, क्या बात है जी, कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें। चलिए जी, यहाँ पर संजू के लिए गाना होगा जो साथ दे रहे हमारे, इंदिरा जी के लिए गाना, और उन्होंने कहा राजेश उगड़ के लिए अगर आप चला सके तो ऑफकोर्स। नीन आपका स्वागत है, कीतिका वेलकम, नमस्कार, लूना कैसे हो आप, कहते हैं कि भाई आज मॉर्निंग का जो गाना आपने चलाया था उसका सिलेक्शन बड़ा मज़ेदार था और हमने काफ़ी डांस किया। आपने डांस किया, अभी रिलैक्स करो क्योंकि अभी पुराने गाने चल रहे हैं और यहाँ के गाने जो है ना मूड सेट कर देते हैं, आई प्रॉमिस यू। कविता हमारे साथ हैं, दोस्त रेखा, अंबिका, प्रेमिला, सबीना के लिए, और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, सरोज के नाम, एंड जगदीप सिंह आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे संजू की तरफ से। और कहते हैं संजू, कहते हैं कि एक अच्छा सा गाना सुना दो दीदी, मैं बहुत उदास हूँ। देखो भाई, अगर आप अंदर से उदास हो, मैं कितना भी अच्छा गाना सुनाऊंगी आपको, वो उदासी हटेगी नहीं जब तक कि आप अंदर से खुद खुश होने की कोशिश नहीं करोगे। तो हम कोशिश करेंगे आपके मूड को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर निष्ठा के लिए गाना होगा, आपका नाम है वशु ने देरा, ओके ओके। यहाँ पर निष्ठा, मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और साथ में यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं लकी, एंड ऑफ कोर्स ये गाना जाएगा आपके लिए, एंड अनवर, हाय अनवर, हाउ आर यू, विद्या जी आपका स्वागत है, नंद, नाजिया गुबर्धन, एंड यहाँ पर डेडिकेट करते हैं गाना फॉर प्रीति, ये गाना जाएगा आपकी सहेली भारती और विलाशा, साथ में ये गाना जाएगा निशा के नाम जो हमें सुन रही हैं, आपकी प्यारी सी बेटी के लिए, और विंता जी, शर्मिला आप लोगों का भी, नुश आपका भी स्वागत करते हैं। माधुरी जी एक दो तीन करते हुए आ गई फाइनली, और साथ में ये गाना हम नीता जी आपके नाम, गीता आपके लिए, आशा उबिलक आपकी मम्मी के लिए, और निशा बुलाकी आपके नाम डेडिकेट करते हैं।

0: खाना सफर खाना सफर
1: ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम यहाँ पर आपके साथ हों और आप हमारे साथ टिकटॉक पे ना जुड़े। इतने सारे दोस्त हैं हमारे टिकटॉक पे जुड़े रहते हैं और हमारे गाने एंजॉय करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए। मोक्ष परवानी की तरफ से यहाँ मैसेज आया है, हमारे बच्चों के लिए गाना चला दीजिएगा, तिया तवी युव कौशल और अनु और पति के लिए भी। ओके, और ऋषिदेव हमारे साथ हैं। नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक? तो ऐसा है कि यहाँ पर सरोज कहती हैं, जस्ट गोन थ्रू द हीट वेव। मुझे पता है ये गर्मी ना जान ले लेती है, इसीलिए मुझे सर्दी ही पसंद है। चलो भैया, हम तो वेट करेंगे, और मॉरिशस में बर्फ भी पड़े तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट गाना होगा आशा उबिलिक के लिए, उनकी बेटी के लिए। वी हैव मृणल यश एंड बेटी दर्शना, स्पेशली उनके हस्बैंड विकास के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी सरोज, यू फीलिंग बेटर नाउ। एंड कल मैंने बनाई पिज्ज़ा, बहुत मज़ेदार था, थैंक यू सो मच। खाने की बात मत करो प्लीज़, अगर हमारी कोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर गर्मा गर्म गाना लगा दो जी, CW में काम करने वाले सभी जो लोग हैं। ओके जी प्रीति जी, चला देंगे। तो ऐसा करते हैं, कविता अनु आपके नाम, श्यामा मोहिराली, सुल्ताना कांदाई, सुदेवी बुदन, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ 40 डिग्रीज भैया, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, बृंदा सुकन आपके लिए, बृंदा इटली से हैं, कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ बजा दो। अरे बृंदा जी, ऐसा क्या? बृंदा जी आपके अलावा अभी और भी हैं यहाँ पे, इटली से सुन रहे हैं हमें।

0: बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर रमिनी पराग जी हैं, वो भी इटली से ही हैं। हाल चाल पूछना ना, आपस में मिल लेना कभी, दोनों साथ में बैठ के चाय वाय पी के हमारा प्रोग्राम सुनना, मजा आएगा। सो वी हैव नितिश बुलाकी, दिया देवदारी, थोड़ा गुस्सा में है, किसी ने कहा प्लीज़ मना दो ना। अब देखो भाई, मनाने के लिए तो मैं गाना चला सकती हूँ, बाकी आप फूल वूल भेज के उनको मना लो। मायावती और साथ में है साधना जगरू और ललिता, विमला देवी, सूर्या, वशिष्ठ और रिया का बर्थडे था तो उनके लिए भी पेश करते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: भाई छोटी सी जिंदगी है और छोटी सी जिंदगी में हम बहुत सारा प्यार बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार हमारे इस प्रोग्राम से मिलता है, रेडियो मनोरंजन से मिलता है, तो रुक जाइए ना, थोड़ा ठहर जाइए।

चलिए अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. मिस्टर पटेल के लिए गाना होगा संजय गणेश एंड वी हैव नीर, आशा बिलक, उत्तम चंद्रारू की, पूनम शवी, निदेश कुसुम, जनिता नामा, थैंक यू सो मच, एंड वी हैव जबीन. हेलो

0: मुझे अच्छे लगने लगे और सपने भी सच्चे लगने लगे। भाई जब कोई अच्छा लगने लगता है तो जाहिर सी बात है सपने अच्छे तो लगते ही है ना।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो सुहाना सफर में यहाँ पर हम आहना का और गीता कालीचरण जी का स्वागत करते हैं और साथ में यहाँ पर काफी सारे दोस्त हैं। भाई हमारे स्कूल के भी दोस्त जुड़ चुके हैं। कुसुम कैसे हो भाई, गुरु जी की याद दिला दी? तो चलिए भाई यहाँ पर गाना जो होगा आपके लिए, वी हैव मंजुला कावले सर फ्रॉम काउंट डिमास्क पावे और वी हैव हंस वी, नमस्ते कैसे हो आप। और कुसुम कहती है तुम छोटी छोटी सी थी, मैं अभी भी छोटी हूँ, बड़ी हुई नहीं जैसी थी वैसी ही हूँ। चलो भाई के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू मच लव। एंड याद रखिए कि यहाँ पर हम अभी फ़ोन नहीं ले सकते क्योंकि लाइन जो है अभी थोड़ी देर में उसमें कुछ मरम्मत का कार्य चलने वाला है जिसके कारण हम अभी बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, अभी हम खूबसूरत गीतों के सफ़र को जारी रखेंगे इस गाने के साथ।

चलिए जो यहाँ पे हम नेक्स्ट गाना जो होगा प्राकी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच एंड तनवीर खालिद विहाब सूबी अनिष्ठा रामतोहल उनकी मम्मी देवंती मोनकी के नाम और साथ में है सीना लीना आदित्या मिस्टर विशाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. तरुण राम हमारे साथ हैं और वो हमेशा बोल रहे हैं कैसी हो विदिता रानी भाई ठीक है रानी राज कर रही है यहाँ पे. अश्विनी भागीरथी हमारे साथ हैं हेलो और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं उनके लिए जो हमें सुन रहे हैं यशनी.

0: What a beautiful song. आप सुन रही हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में.
1: नहीं
0: आएगा आएगा लड़का जरूर आएगा.
1: तेरी कसम आऊंगा.
0: देखा मैंने क्या बोला, जरूर आएगा लड़का. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा ये हम येशनी के नाम डेडिकेट करेंगे. उनकी मम्मी ने भी उनके हस्बैंड को चाय पे बुलाया होगा. कहते हैं शादी के बाद पहली बार पापा राकेश मम्मी प्रीति के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, घर आई हूँ. तो नेक्स्ट गाना ऐसा करते हैं, आपके नाम डेडिकेट करते हैं. और ये गाना हम प्रेमा के लिए एंड ऑल्सो फॉर अर्चना डांडा जो न्यूजीलैंड से साथ दे रही हैं. और तेज सुनातन हमारे साथ है, उनके नाम जाएगा. एंड वी ऑल्सो हैव आशा बंसी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. तो ऐसा करते हैं इस अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. और याद रखिए मैं एक बार फिर बता दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ यहां पुराने गाने चलाते हैं, नए गाने नहीं चलाते. मिलते हैं इस गाने के बाद, यानी कि 1 बजे के समाचारों के बाद.

चलिए श्रोताओं, तो इसी के साथ अभी थोड़ी देर में एक बजने को है और आप सुन पाएंगे समाचार, और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है, तो पुराने गीतों का सिलसिला जारी रखेंगे।

0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेशस और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माहे स्ट्रीट स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कल रात स्टादलिनिते में आयोजित राष्ट्रीय परेड और कार्यक्रम के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति को बधाई दी। इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीपीय देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सेशल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राज्यसभा में थर्ड रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा, और साल के अंत

0: में अन्य कदम भी लागू किए जाएंगे। विशेष रूप से 1 अक्टूबर से मिठाइयों और बिस्कुट पर शुगर टैक्स का विस्तार, साथ ही प्लास्टिक की बोतलों पर टैक्स लगाए जाने की उम्मीद है। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसुस के अनुसार यूरोप में अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव सैकड़ों लोगों की असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकती है। रविवार को पूरे महाद्वीप में तापमान के पुराने रिकॉर्ड फिर से टूट गए, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य भी शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में WHO प्रमुख ने कहा कि 21 जून से यूरोप में उच्च तापमान से जुड़ी 1300 से अधिक असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं। और यूक्रेन ने घोषणा की है कि उसने रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर अपने हवाई हमलों को तेज करते हुए 2 रूसी तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले किए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप में 54 साल के 54 years old के श्री माहेन अबिलक जो माहेन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. You're listening to RM3 Radio. Mana.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और इसका हम बता दें लाइव चल रहा है रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पे, आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। स्वागत है आपने अगर अभी अभी हमें सुनना शुरू किया है। चलिए चलते चलते बबीता बुलाकी, पास्कल सिया, राकेश जोनकी, रिशान, रितु, ज्योति, साथ में जीवन सरजू, रेशमा, मुकेश अदी, साहिल, इन सब का हम स्वागत करते हैं। रेशमा कहती है उनकी बेटी कृषि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी है आज, तो बिजलार और सीचन फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर 11 साल हो गए मम्मी हमसे दूर हो गई हैं, उनको मिस कर रही हैं ज्योति, आरती, प्रवेश, विशाल और प्रिया। एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप भी, तो नेक्स्ट गाना होगा फ्रॉम सहना टू माया, गीता एंड रागिनी, साथ में याश्मीन ऑफ कैटरबोन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीना सुब्राती और सुमित चौधरी, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स। किंग यूजर, हाई, हाउ आर यू, कैसे हो? और यही पे गाना जो होगा हम मनोज प्रति आपके नाम डेडिकेट करते हैं। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनकी वाइफ विमला के लिए भी और पूरे सेवास्तोपोल से पूरी फैमिली की तरफ से। एंड नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए, आप हैं शंकरी, शंकर रिजाल, ओके, एंड हाय सनलाइट, अलग अलग नाम होते हैं यहाँ पे। चलो भाई, तो अभी के लिए नेक्स्ट गाना आपके लिए, थैंक यू जीवन जी और साथ देने के लिए भी और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लीना अमोका से हमारे साथ हैं, कहती हैं बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं और दीप्ति जी भी कहती हैं कि आज के गाने तो एकदम मस्त हैं।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर की जितने भी हम सफर हैं उनको हम यही कहेंगे कि खूबसूरत गीतों का ये जो सफर है इसमें अब नाम जोड़ेंगे हम विकास और स्वस्ति का, सिस्टर अमनदीप कौर के नाम गाना होगा, एंड वी ऑल्सो हैव अभिषेक राम गुलाम जो हमारे साथ हैं एंड लॉन्ग टाइम या। चलिए जी, अमृता है साइपिया से, गाना जाएगा फॉर फ्रेंड अरुणा और लीना हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आपके ये जो प्यारे प्यारे वर्ड्स आपने हमारे लिए भेजे हैं ना, इट मीन्स सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ यास्मिन भी कहती हैं भाई मम्मी पापा की याद आ गई, उन्हीं के ज़माने के ये गाने हैं। और अभी तो हमारे पास और भी गाने हैं, कुछ इस ज़माने के भी हैं। इस ज़माने के बोले तो कुछ हमारे पास 70s 80s के गाने हैं और मैं जानती हूँ ये गाने आप ज़रूर पसंद करेंगे। और ये 80s का ही गाना है, फिल्म का नाम है सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। मनहर और अनुराधा जी की आवाज़ों में आए सुनते हैं गाना।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: स्वागत है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम विदिता के साथ। चलिए नेक्स्ट गाना तरन दौलत के नाम नीना। नीला बाई अनिता बलखराम जी का आज बर्थडे है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। ये गाना होगा उन तमाम दोस्तों के लिए जो अभी काम पर हैं, और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं शारदा लखनौत के लिए। गाना हम ऋषभ के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, आज उनका जन्मदिन है। और दीप्ति जी यहाँ पर आपके लिए गाना होगा। विनेश कैसे हो आप, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अनिल राजन कुंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं एक गाना दोस्तों के लिए अभी अगर हो सके तो डेफिनेटली ये गाना आपके सभी दोस्तों के नाम। और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए माधुरी जी, अभिषेक रिकॉय एंड वी हैव रेनुका। रेनुका जी आप कैसे हो, आपके लिए गाना होगा। एंड थैंक यू हमारे सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। और नेक्स्ट जो होगा ये गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म सागर से। चलिए जी यहाँ पर एक और मैसेज आया है, हेलो गुड़िया रानी, बेटी रानी कैसे हो। मैं ठीक हूँ थैंक यू। एंड लविन हाय, नेक्स्ट वन गोज फॉर यू, आपके लिए स्पेशली पेश करते हैं ये गाना। अच्छा तो आपका भी जो पेट शॉप है वहाँ पर आपके जितने भी पेट्स हैं उनको भी आप गाना सुना रहे होंगे, है ना।

चलिए तो खूबसूरत गीतों की इस हसीन सफर में एक और प्यारा सा गाना जोड़ते हैं हम। और ये गाना होगा माया रामदूस जी के लिए, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, वैदेही की तरफ से उनके बेटे के लिए जो बीमार है घर पे हैं आज, नैना सरिता सुरेश सुकन्ना की तरफ से, ओके सरुजा की तरफ से सुरेश सुकन जी के लिए गाना होगा। अभिसान मनोज विद्या सभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए खूबसूरत प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी के नाम।

वैसे यहाँ पर तो बिन बुलाए बारिश हो ही रही है, चलिए कोई बात नहीं, गीतों का सिलसिला जो है कम से कम गाने बरस रही है वो काफी है। और यहाँ पर खूबसूरत गीतों की इस लिस्ट में लता जी के साथ अब नेक्स्ट गाना जो बप्पी दा अपनी आवाज में लाने जा रहे हैं, सुरक्षा फंड से हम लेकर आए हैं, प्रीति दुखित राम, बबीता ने मनूर, सबीना के लिए होगा। और साथ ही साथ ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए देसी, आपके हस्बैंड के नाम। और संगीता सुखारी, आपका हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। निशी सिबरत का भी हम वेलकम करते हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? काफी सारे लोग हैं जो समय अपना लंच ले रहे होंगे, बोना पीछी, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी जरा संभाल के चलाएगा, ठीक है, ध्यान से।

दिल था अकेला अकेला, लेकिन यहाँ पर हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे और लगता है कि अभी हमें 3 बजे तक आपका साथ देना पड़ेगा राइट है आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर। खूबसूरत गीतों का सफर समाचारों के बाद जारी रखेंगे। तो चले भाई, ये है शान फिल्म का वही खूबसूरत सा गाना, और नेक्स्ट हमारा जो गाना आएगा शायद उसमें हम 80s और 90s के गाने अब शामिल करेंगे।

जो लोग हमें फोन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यहां पर फोन में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है इसके चलते आपको बस हमें मैसेजेस ही भेजने होंगे नंबर है 5250620 या तो फिर आप लोग जरूर हमें अपने टिकटॉक पे यानी कि रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं

चलिए गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए, और हमारे साथ हैं जीवासन पिरमल, वी हैव बिल वैष्णव, और साथ में हैं संजनी। राम राम जी, कैसे हो? तो चलिए भाई, इसी गाने के साथ आगे बढ़ेंगे। कविता भक्त और आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। मिलते हैं थोड़ी देर में समाचारों के बाद।

0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ नमस्कार
1: नमस्कार गिनीशा सभी को नमस्कार सीशेल्स और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माहे स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई प्रधानमंत्री ने कल रात इस्तादली नीति में आयोजित राष्ट्रीय परेड और कार्यक्रम के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति को बधाई दी इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए इस पर बातचीत हुई उनके छोटे द्वीपीय देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई मॉरिशस सेशल्स में एक उच्चायोग खोलेगा कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राज्यसभा में थर्ड रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल हैं इसमें ऐसे कदम शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक

0: जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स की में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। और विदेश में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमरीकी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों के आदान प्रदान के बाद अमरीका और ईरान पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। ये घटनाक्रम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में और उसके आसपास हुए कई हमलों के बाद आया है, जो दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के आरोपों के साथ चरम पर पहुंच गए थे। ईरान ने इन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो होर्मुज में हमले रोकने के लिए सहमत हो गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन अबिलक, जो महेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4:30 उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: You're listening RM Free Radio.

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: ये सही है कि आगे आगे चले हम और पीछे पीछे प्रीत मितवा। तो ऐसा करते हैं, इसी प्रीत के साथ आगे बढ़ते हैं। लता जी के बाद अब आशा जी का इंतजार करते हैं हम, और गाना होगा आपके लिए। मैंने बोला ना कि आज मंडे हैं, मंडे में मन लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका भी मूड ठीक करने के लिए हम आ गए हैं वापस। याद रखिए हमारा टिकटॉक लाइव है, अगर आप चाहें तो हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे खूबसूरत गाने जो हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आप सभी लिसनर्स के नाम 7 दिन के लिए। थैंक यू।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलो जी, ये है सुहाना सफर। और सुहाना सफर में अभी क्या है, प्रोग्राम को हम आगे ले जा रहे हैं क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं है, तो मैं हूँ, तो मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और गाना चलाते हैं। तो नेक्स्ट गाना होगा संजीव मंदप, परी। परी जिन्होंने अभी अभी मैं ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने सबके लिए। और यही गाना हम विमला लक्ष्मण, कुणाल सिंहपाल, यश विष्टी। विष्टी अभी गर्मा गर्म पुलाव बना के बैठी है, रिलैक्स करी है और यहाँ पर हमारे मुंह में पानी आ रहा है। और साथ में यहाँ पर हनी है हमारे साथ। हनी माय डियर, हम लोग नए गाने नहीं चलाते, हम पुराने गाने चलाते हैं। तो चलो, ये गाना इंदिरा जी आपके लिए होगा और साथ में रजनी महावीर आपके लिए। नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में। हे मैं शरेशमिया कहते हैं, हेलो बबली जी आपने मेरा नाम बदल दिया। कवि नेहा, यही गाना आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं, शायद ये गाना सुनकर आपका मूड बदल जाए।

ले। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है बप्पी दा के साथ अलीशा चिरॉय की आवाज। जी हाँ, ये गाना 80s का गाना है, जो आपको पसंद आया होगा जरूर। चलिए, यहाँ पर मालविका हमारे साथ हैं, कहती हैं कि नेक्स्ट गाना उनके लिए, उनके सभी फैमिली के लिए साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं प्रेमिला के लिए। फ्रांस से हमें याद करी है प्रेमिला, हैव अ ग्रेट वीक, यू टू मीला रामा, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और साथ में यही प्रोग्राम में जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा, ये डेडिकेट करते हैं ललिता के लिए, जो साथ दे रही है। एंड वी आल्सो हैव सो मेनी पीपल, दैट्स कोर शेख सामिया, और फरमाइश तो नहीं लेकिन गाना एंजॉय कर सकते हो।

0: Oriel Free Radio. Radio. Radio.
1: चलो जी किशोर जी की आवाज में एक और गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर रीना न्याना एंड लीना फिदू के नाम भी यही गाना हम डेडिकेट करेंगे मिस्टर सिंह बनमा के लिए एंड साथ में वी हैव बेबो थैंक यू बेबो थैंक यू सो मच दिस वन गोज फॉर यू स्पेशली और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए ये है गायत्री विश्वनाथ और गायत्री जी थैंक यू आपके लिए गाना होगा और आपके पूरी फैमिली के लिए विश्वात्मा मूवी

गाना आपको बहुत पसंद आया विष्टि, थैंक यू सो मच. देव कुमार कालीचरण, थैंक यू, आई होप ये एनर्जी आप में भी हो. मीला रामा अभी एंजॉय कर रहे हैं. तैयब बोला थैंक यू. बबीता बंधु, थैंक यू सो मच. एंड काम शाह, हेलो, वेलकम टू रेडियो मस्त.

0: RM3 Radio. Radio.
1: शरीफ भाई, ये वाला गाना सुन के तो जितने भी गोविंदा के फैंस हैं वो खुश हो जाएंगे। इसका रिमिक्स वर्जन मैंने आज मॉर्निंग में चलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर इस गाने को चला दिया जाए और आपको खुश कर दिया जाए। नेक्स्ट गाना दिनेश गोपी के नाम डेडिकेट करेंगे और साथ में हमारी है माया भगवान एंड वी ऑल्सो हैव कैथो से किरण जी। कैसे हैं आप? गायत्री जी आपके लिए भी, यलेश आपके नाम भी, एंड साथ में जितने लोग अभी हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े उनके लिए, और वीर सिंह आपके नाम भी।

0: दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से और आपके आ जाने से यहां पर तो चार चांद लग जाता है
1: सुहाना सफर सुहाना सफर
0: चलो जी यहां पर हम वेदिता का वेलकम करते हैं वो भी हमें सुन रही हैं हाय कैसे हो तो एक और गाना है सिफोरा ने हमसे मांगा है एंड वी आल्सो हैव सो मेनी पीपल हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अब नाम तो आपने लिखा नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं नाम लूँ तो किसका नाम लूँ ठीक है और विष्ट कहती है कि भाई हमारे ना 16 महीने का हमारा बच्चा है हमारा बेटा है वो सो रहा था और अचानक वो जाग गया बेड से और आपके गाने सुन के वो डांस करने लगा मुझे इतनी खुशी हुई ओके और वैदेही कहती है कि मैं माइकल जैक्सन की बहन लग रही हो अच्छा माइकल जैक्सन की बहन ठीक है थैंक यू सो मच लीना जी थैंक यू सो मच आपका भी स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में एक बार फिर से और अच्छा लगता है रेडियो श्रीनगर अरे नाम भूल गई मैंने बोला ना गजनी की बहन सजनी हूँ मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ जब आप लोग मैसेज करो तो थोड़ा नाम वाम भी भेज दिया करो गीता जी कैसे हो गाना जाएगा आपके लिए मम्मा गीता ये हैं अनुष विदुषा और अमशवीर थ्रियोली से और यहाँ पर गाना आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा गाना है फिल्म है मैंने प्यार किया बस ये गाने हमें ज़्यादा चलाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम ज़्यादातर पुराने गाने चलाते हैं लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना 80s और 90s के कुछ गाने जो हैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए आप भी खुश हम भी खुश नए गाने की फरमाइश करते हो चलो ये वाला सुनो

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है सुहाना सफर और सुहाना सफर में एक से एक बढ़ के गाने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलो भाई, तो खूबसूरत गीतों के इस सफर में अभी क्या करना है आपको, कौन सा गाना सुनना है? मैं तो कहती हूँ मिथुन दा के जितने भी फैन हैं उनको खुश कर देते हैं। खेमराज जोशी नेपाल से हमारे साथ हैं एंड जीत क्या बात है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको भी ये गाना बहुत पसंद आया ना? मुझे भी बहुत पसंद आया, इसीलिए तो चलाया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर माधुरी कहती है कितने दिन बाद इतना लंबा लाइव चल रहा है। बहन अभी चार्जर पर है हमारा फ़ोन, दम तोड़ दिया था इसने। चलो माया जी थैंक यू, कविता दुलीप वेलकम, और साथ में यहाँ पर है वी, कैसे हो? दिल है कि मानता नहीं है, मेरा भी दिल नहीं मान रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी प्रोग्राम का जो आखिरी गाना है उसके साथ तो बाय बाय करना पड़ेगा अभी हमें। चल चल चलते यहाँ पर गाना, रेखा, दिनेश, यश, हेमंत पटेल, मीला रामा, सुबी, कुछ अम्बित और संध्या के नाम। मुकेश जी नेपाल से कैसे हैं जी, वेलकम।

माया जी कहती है कि मोदी ब्लॉच में बहुत बारिश हो रही है, गाने मस्त चल रहे हैं, ऐसे गाने बजाते रहो। और चलो जी, हम तो बजाते रहेंगे बस। अविनाश राम प्रसन्न, आपके लिए भी गाना होगा, एंजॉय करें।

चलिए गाना हम कृष्णा के नाम डेडिकेट करते हैं फ्रॉम माया. एंड हमारी डीवा गर्ल वॉचिंग फ्रॉम यूके. हेलो यूके वालों, कैसे हो? यू ओके यूके? हम तो एकदम मस्त मूड में आज.

0: चलो जी, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए। कौन है हमारे साथ भाई? मस्त गाने चल रहे हैं, मस्त गाने में मस्त मूड हो रहा है सभी का, सभी एंजॉय कर रहे हैं, सबको बस गाने इतने पसंद आ रहे हैं कि सब झूम उठे हैं। चलिए, प्रतिमा गंगा के लिए गाना होगा और वहीं पे रानी जोश्री हमारे साथ जुड़ी है आपके लिए। रोहन, स्वागत है आपका। हेलो देविना, बस आप भी हमारे साथ ऐसे ही खुश रहिए, हमें और क्या चाहिए। रेणुका जी कहते हैं प्लीज लाइफ को एंड मत करना।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: सुविधा जी के लिए गाना होगा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा यहाँ पर। चलिए भाई, अंश के लिए गाना होगा, एंजॉय कर रहा है वो। करुणा पुनीत आपके लिए भी। और हाँ जी, जीना जोशी जी वेलकम, आपका स्वागत है। और इसी के साथ किशोर कुमार का कोई गाना, भाई किशोर कुमार का ही गाना है, फिल्म का नाम है प्यारा दुश्मन। तो मेरे जितने सारे दोस्त हैं, प्यारा दुश्मन फिल्म का गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी। और इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपसे अब थर्सडे को। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, लव यू, टेक केयर।

बात का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
5: Radio Musti.
0: North, South,
6: 103.5.
0: East, West,
6: 96.4.
0: Center,
6: 99.4.
7: RM2, Radio Musti.
5: Radio Musti.
7: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विद्यमा, आपको नमस्कार।
9: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेशेल्स और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माई स्ट्रीट स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पत्रिका मिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए, इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीप देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सेशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राष्ट्रसभा में फर्स्ट रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसमें से उपाय शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। और विदेश में पाकिस्तान ने रविवार को अपनी सीमा से लगे अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए और जमीनी सेना भेजी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। कम से कम 36 नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और 160 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा की और इसे अपराध और अत्याचार करार दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक में 54 साल के 54 years old के श्री महेन आबिलक, जो महेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके घर रॉबिन्सन

सबको एक प्रणाम नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बाटी। हाँ जी, अभी जो गीत सुनला आठ ना बारह ना आजकल के जाने लाकर बारे में सब कोई बिये जाने लन सर, एक रुपया पाँच रुपया के जन दस रुपया के जन कौन बाटे। आगे के जमाना जो रहल वो बहुत ही जोली जमाना रहल। जी हाँ, आप हमने के सुनत हुआ देखत हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज हमने के मेहमान हवा फागे दने से जिन अधिकारी हवन श्रीमान संजय संभू। दर्शकगण श्रोतागण, आज हमने एगो ऐसन टॉपिक पर चर्चा करब सा जैसे जनबे करेला हमने के दादा दादी लोग आगे जब जियत रलन जा उ लोग के लाकोर में, उ लोग के आंगन में कौन ची नहीं रहल। हाँ, पैसा सकेला उतना नहीं रहल, पर जितना चीज उ लोग के आंगन में रहल, खाए के पिए के सब कुछ मिल जात रहल, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो एगो फल हो। आगे हम ही अपन जमाना के सोचब तो हमार लाकू में रहल काहबल और कौन ची रहल, इतना जो फल रहल, फुसितिया रहल, मंगासा रहल और कौन ची रहल, बाप हम ही नहीं जानत है इतना चीज रहल। पर आज ये सब हमने देखा था जा रैपिड अर्बनाइजेशन हमने जैसे बोली ला जा डेवलपमेंट होते गल। हाँ, चाहेला डेवलपमेंट हो के कंस्ट्रक्शन होते जात बा, घर चाहेला बनाए के हमने के जो आबादी बातें पॉपुलेशन बातें वो बढ़ले जात बातें, तो जस जस डेवलपमेंट होते गल हमने के जो माटी वो सब बातें ओकर वाले ओकर मोल कमती नहीं होल बा। पर जहाँ देखबा आज ये सब कमती हो गल बा और जितना चीज उ लोग खात रहलन जा आगे हमने बचैली जा तोहरा दिखैली जा माटी के मोल कार्यक्रम में मौजू। हमने के आज के दिन गाशो सकेला नहीं जाने लन जा, पर हमने के माता पिता दादा दादी लोग इस सब के बारे में जाने लन जा अभिवाद जौताक। इस सब के बारे में आज तरी सुन हमने बचाव जा हम जो हमने के वैनिशिंग हेरिटेज बातें, हमने के धरोहर ये सब बातें जो डिजापियरिंग क्रॉप्स है आज ई पर हमने चर्चा करब जा। और जैसे कि हमने तोहरा बोली आज हमने के विशेष मेहमान हवन फागे के अधिकारी श्रीमान संजय संभू जी। भाई संजय, तोहर स्वागत बाटे फिर से माटी के मूल कार्यक्रम तो हमने टीवी में करी ला जा, आज हमने करत है ऐसा, पर आज की चर्चा कर कार्यक्रम में बस जैसे कि हम बोले हैं ये सब जो नाम ले ले हैं जौताक अभिवाद ढेर चीज बा जे हमने के आज के जिनगासो लोग नहीं जाने लान जा, तो चाहेला फिरों से ओ लोग के वाले पहुँचाए के आगे बढ़ाए के, तो ये सब हमने देखा था जा जो मॉरिशन लैंडस्केप बातें वो हमने सकब सा बोले वो कल्ले कल्ले वो लुप्त होते जाए बातें डिजापियर होता, पर एकर से आगे हमने जाने खोजब जा इस सब के कोज कौन ची है। तनि सुन एकर से आगे हमने के जो इतिहास बातें आगे तू अपन बारे में तनि सुन बताओ, और जब तू छोटा रहला तब कैसे रहल।
1: नमस्ते निशा, और जितना कोई हमने संगे जुड़ल हो जा सबके नमस्ते। है कोई अच्छा चीज बोला है इतिहास में चले के खुद, तो हम जब छोटा रहनी तो चलक का बोन के पर बतियाला जा। अच्छा। क्योंकि हमार मामू मामी सब काटबोन के होन जा, तो वहाँ पर जात नहीं सर रहे, तो उस समय में लासूस में है लासूस काटबोन में जब जेब या फिर कहूँ जेब वियजनाज में जेब कहूँ जेब हिन्ने उन्ने सोनाक वगैरह, तो तोरा दू गो घर के बीच में या घर के और रास्ते के बीच में जो बाउंडेरी बा बराज हो तोरा ब्लुक के नौकत हल। हाँ। ये हम तोरा शहर में बोलते हैं, तो उस समय में दीवार ने रहल एगो पौधा रहल ओकर नाम हम नहीं बताने सा तूत। हाँ। में ओकर नाम मलबेरी है। मलबेरी के बगाज बनावल जाता हल, तो ताई सब कर जाता है निमन से बगाज के। हाँ। बगाज की तरह, तो वहाँ पर हर साल तोरा तूत मिली खाए के आई शहर शहर में बात
0: आगे तो फटाक रहल हम हमके याद। हाँ। बताए फटाक रहल बाले में जात।
1: हाँ बिल्कुल, हुआ पर फटाक भी रहल, तो काट के झाड़ू बनावल जाता हल। और ये सब आंगन में जब देखब तो कहीं ना कहीं एगो अमरूद के पौधा रहल, पपीता रहल, पपाई रहल,
0: बेगामुत रहल,
1: बेगामुत रहल। हमके याद बा पीछे में जैसे कि बोला सा जाक कटहर,
0: कटहर
1: कटहर भी रहल,
0: मान्योग रहल,
1: कोको के गांची रहल,
0: कौन ची नहीं रहल,
1: अनेक प्रकार के ऐसे चीज इस शहर में बोलता है।
0: हाँ।
1: अब निकल के आप जा रूरल एरियाज में, गाँव में हम खेप के हैं, तो वहाँ पर तो और अनेक प्रकार के चीज रहल। आज का जो नए लोकेला जामालाक रहल, जौ बुजवा रहल, जौ बुश रहल, जैसे शुरू में बोला जौ तक अभिवाद रहल, तो ई सब जब देखब तो शायद हमने के बाप दादा लोग के पास उतना शायद पैसा शायद नहीं रहा, शायद रह भी रहल, लेकिन वो एगो कैसे बोलने को किलचिया की तरह रहल कि चाहेला हमने के आंगन में एक आध गो चीज रहे के, ताकि उसे हमारे परिवार के सकब एक आध गो चीज गुजारा नहीं।

0: in ekagochi mili jan security alimente katin bahut ek bahut purna jagah ho kar me kyunki okar me kunch mila vitamin la mineral hai la wagera wagera ta aur nahi pehla khareedari kare ke na ji ta isab rahal
1: ये सच्ची बात बोलत हुआ और हमने को सकेला हमी जितना चरा तोहरा देखत हुआ सुनत हुआ उन लोगों के अपन बचपन सब अपन जवानी के दिन सब याद आ हुआ था कौन सी नहीं रहा हाँ। आज जैसे कि हमने बोला था ऐसा इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ था कंस्ट्रक्शन सगरो जहाँ देखबा जैसे कि बोली आबादी बढ़ा था अब चाहे ना कंस्ट्रक्शन करे के
0: धीरे धीरे कुछ होता धीरे धीरे जब देखबा ये जो शायद 40 साल जो बीतल बात जन जगह में उतना घर नहीं रहा किसी सुधना के लिए बकाबोन में पहले शुरू में उतना घर नहीं रहा वहाँ पर ही लेकिन अब जब जब तक खाली घर घर घर घर लग गया कहूँ पर ही देख बता घर यहाँ के गांव में आज जब तो गाँवों में वहाँ पर भी देख बा घर घर घर घर सगरो बनल बा तो जन माटी बातें वो अब टुकड़ा टुकड़ा में बटल जाता अगर टुकड़ा में बटल जाता और कमें घर बनावल जाता जगह कम हो जाता ये कारण से जन जन बनी जा एक आध गो चीज जब रोपा तहल तब कमती दिखाई दे रहा लेकिन हबी ले भी हवन सा शहर में भी या फिर गांव में भी एक आध गो आदमी एक आध गो परिवार जन हवन सा जन जाने लन सा एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक आध गो चीज छला रहे कि हमने के आंगन में लोग आज ले भी देखबा लोग के आंगन में हरियाली रहे ला
1: तो आज एगो आंगन में देखबा दो तीन गो घर बनल बाती कबो कबो एगो आंगन में हाँ एक गो घर बा लेकिन ऊ जब जैसे बोलत हुआ वो लोग के आंगन में एगो गौची मिली लेक्सी के एगो गौची मिली आम के तेरे सुन तुलसी के पौधा मिल जाए हईजा तेरे सुन अनार हौजा मिल जाए तेरे सुन प्रौताशो सब करे लन आजो बाती कई जना बोले लन देखा प्लासवे नहीं बात आज तो अपार्टमेंट में रही ला सा घर के प्रॉब्लम हुआ था अपार्टमेंट में रही सा मान कि जितना जगह मिली हमने के जो माटी के मोल जैसे हमने बोला था जा वो कमती नहीं होला आजकल हमने कंटेनर गार्डनिंग की बात कर रहे थे माने कि हाउ जो वोलोते हुआ बात चाहे ला हो के जहाँ रबा रूफ गार्डनिंग करे सकबा एगो प्लॉट एगो पो में डलबा सगरो सकबा करे आज
0: बिल्कुल एगो ऐसा तो हर एगो इमिशो में हाला नहीं सकेला एक महीना होते हुए देखो चीज बोला नहीं फैसिलिटी
1: जी
0: जब एक आदमी फैसिलिटी में गिर जला ता ऊ जन हो श्रम रहला जिफो रहला वो इतना नहीं करेला
1: भूल जाला वो
0: ता माटी के सकेला माटी सकेला टुकड़ा टुकड़ा होते हुए लेकिन कहीं ना कहीं हमने हमने ही पहाड़ों की तरह माँ बाप की तरह हमने ही एकर में हमने के वो होल बातें कि काहे नहीं हमने रुपाई नहीं होता क्योंकि हमने अपन लड़का लोग के कौन चीज सिखाते हैं सब सोफा पर बैठे के टेलीविजन देखे के तब बाहर में कौन चीज रुपाई करिए तो गते गते हई किलचेवा हई तो बढ़ता ना
1: जी
0: तो फैसिलिटी में जा सुपर मशीन में खरीद या दुकान में खरीद
1: मतलब कि सब कुछ फैसिलिटी मिले था सब कुछ तो मिले था काहे चाहे ला रोपे के
0: तो
1: आज हमने सो सब जा देखब जा तो हमने के जो मॉरिशन लाइफ बात है हमने के जो मॉरिशन हवन जा वो लोग कौन ची यानी कि लूज करत हवन जा वो लोग कौन ची मिस करत हवन जा ये सब जितना अभी प्लांट की बात करत है जहाँ आपको वाद जौता आज तो लाखों में नहीं देखबा
0: सबसे पहला तो अजय को चीज तुरा नहीं मिलता खाए की तो अपन जीवन में कबूल ने जानला कि कैसे टेस्ट होता है सबसे पहला था ये बात जितना अजय हमरे उम्र के आज हम जिन जिन लोग बा शायद नहीं जानते हैं जो बुजवा कौन सी है जो बुस कौन सी है वावांग कौन सी है पोमजाको कौन सी है एक में हम अनेक चीज का वैसे बोले बगैर गोडोल कौन सी है तो सकेला नहीं जानते हैं लेकिन हमरे उम्र के शायद जनता जन बाकेला सब चीज नहीं जानते
1: हुए
0: सबसे पहला था सब जन जन टेस्ट बातें वो लोग कबू ने जन लन जा कबू ने जन जा कौन जीवी रहा हमने के मॉरिशस में कितना चीज सकते नहीं सकाए और लुफ्ट उठाए और फायदा उठाए
1: तो एक रीजन कौन सी हवाई संजय अभी हमने जब बात कर रहे थे ऐसा तो जैसे बोली डेवलपमेंट हुआ था कौन सुशो सग्रो हुआ था तो कल ये सब जो हमने के जो क्रॉप्स बातें वो लुप्त होते गल बातें तो कैसे
0: ये का सीधा सीधा जवाब नहीं बामा लगे लेकिन जहाँ तक हमने के जो ट्रेन दे वी बा जैसे बोला सा हमने के जीवन जैसे जाता एक रश में जाता सवेरे उठबा परे लाल

0: कुछ होगा बाप
1: लैका फैका के देखे के तब तोरा पहला भागे के काम में ये दिखा यहाँ पर या नहीं जा शाम के जेबा फिर से पकवान सब सब बनाए के वगैरह
0: सुबह फिर से फजर के उठबा
1: थकान रहेला तब समय ही नहीं मिलेला तो ये भी वो कारण बात है कि इतना समय नहीं मिला था हमने के एज एन इंडिविजुअल या परिवार सहित कि ऐसा ऐसा चीज करब जा तेकर में खाली हो टेस्ट के ओकर समस्या ने समस्या नहीं लेकिन टेस्ट नहीं सकनी सकते ना खाली ये नहीं बात है आजकल देखबा तो साइंस रिसर्च जन आवेला तो बोला कि जितना एगो पेड़ पौधा बा एगो फल बा ओकर में सकेला कुछ न कुछ हो जे मिस करब से आगे जाके के जानियो कर में कौन चीज देख वह हो कि सकेला पपीते में जिसनाल रहत
0: एगो रीजन हयो सकेला हो भाई संजय कि आगे हमने न्यूक्लियर फैमिली में रत रत जा दादा दादी माताजी पिताजी लैका फैका सब एक एक घर में लगभग 10-15 लोग आज देखब तो खाली माँ बाप ओकर एगो लैका दूगो लैका उहो एगो कमरा में हौ एगो कमरा में हौ जन कुलचौ बाते दादा दादी नाना नानी के जन आगे हमने कहानी सब सुनत रह जा उ लोग जानत रह जा अब कोई नहीं बा तक के बचाए
1: के बोल जन अनुभव वाले के बाते उने मटा था ना नीचे नहीं आवे था तो रेजो मा जन बोला तो दादा अनुभव ने दादा दादी के बा पर दादा पर दादी के रहल गते गते पर दादा से पर दादा तक दादा से बाप तक उ लोग पकावत रह सब तो गते गते सब एक आठ गो जन चीज बा नहीं आवे था नीचे ले लो
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के चर्चा कार्यक्रम देखा हुआ सुनत हुआ तो आज हमने ऐसन क्रॉप्स के बारे में सब्जी हो फल हो ढेर चीज हमने के ढेर बजरना लोग सुनत हुआ जा देखत हुआ जा कुछ शेयर करे के मन बातें तो लोग अपन जमाने में कौन सी की याद बातें कौन फल कौन सब्जी के जब हमने बात करे था जा अपन कुछ शेयर करे के बातें तो हमने के नंबर है 402-4-5

0: धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम देखा था सुना था। जी हाँ, आज हमने अवसन जो क्रॉप्स के बारे में, सब्जी फल के बारे में हमने बताया था, जा जो नकले कले लुप्त हो गल हवन सा। आज हो बातें हमने हमने के मेहमान हवन जहा श्रीमान संजय शंभू जी फागे दाने से। शंभू जी, हमने जब डिजापियरिंग क्रॉप्स के बात करा था जा, तो हमरा याद बातें मान्योग आज हो मान्योग के हमने बात करी ला जा मुरुंग मुरुंग के याद आल। आज हम तो बुझो बना ठंडा मौसम में मुरुंग मुरुंग के, तो मुरुंग तनी सुन एकर बारे में बताओ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गल बा।
1: तो देखला जैसे बोला मुरुंग पहले हमने के आंगन में रोपा था, तब परिवार परिवार के परिवार लोग पकावत रहन जा, बुयो बनाते या भाजी बनाते रहन जा, या कर हाँ ओकर बातों रहल उ तक ओकर से तरकारी आलू सब डाल के मसाला में पकावल जाता हल। तो समय के साथ तो जिस पागत होता ना, लेकिन समय के साथ ही अब कैसे बोलिए रिसर्च होता साइंस बातें, तो अब देखा लता कि देखा मुरुम में अनेक प्रकार के जो मिनरल्स बातें
0: विटामिन
1: मिनरल कैल्शियम ओकर में बातें हम सोचा खाली दूध में कैल्शियम है ना, मोरिंगा में मुरुम में कैल्शियम भी मिलेगा, जिंक मिलेगा, अनेक प्रकार के मिकोलेमो मिलेगा। तो उसे ओके अब बोल दे सुपर फूड
0: जी,
1: सुपर फूड इंटरनेशनली संसार में और खासकर अफ्रीकी देश में, तो अब बोलन सा मोरिंगा एगो मुरुम एगो सुपर फूड है। तो मॉरिशस में एक आध गो हवन जा छोटा मोटा कंपनी खेल बा जो इन मुरुम के ओकर पैदा उत्पादन के लंस और मुरुम के ओके ट्रांसफॉर्मे कर जैसे कि बा मोरिंगा चाय
0: जी
1: सकबा को से चा बनाए या एफ्यूजन की तरह प्रयोग करके देखा कहाँ से मुरुम हमने बुयो बनाया था घरे तक मुरुम कहाँ पहुँच गल बा, अब ओका से चाय बना लेता। तो एक खासियत आजकल ढेर कोई आप ऐसे कर ला और घर पे हम जानला ढेर कोई जो हमारे दोस्त लोग बा जेकर पास शायद मुरुम नहीं बातें, तो कुछ कल जाके आके आवेलन सा घर पे तोड़ के जालन सा था घरे लेके सुखा देवेलन सा, तो सुखा के
0: पीस के
1: हाँ तब रख देवेलन सा नहीं पीसे लन सा खाली सुखा देवेलन सा, तब पत्ता निकाल देवेलन सा खूब सुखा लेला, तो जब गरम पानी में लेके दुगो पत्ता
0: या फिजे कर दी लन सा
1: ऐसे प्रयोग कर लन सा।
0: तो ऐसे देखबा तो इतना हमने के लोकल मुरुम हमने के लोकल प्रॉन था
1: लोकल में गनाला शुरू में, तो इतना जो हमने के जन टापू बात है प्लाओडेमिक वगैरह रहा ना, तो ये सब प्लाओडेमिक नहीं होन जा, लेकिन इतना ले बारिश से हमने के पूर्वज के साथ साथ यहाँ पर आल होन जा तो लोकल में गनाला
0: जी। तो हमने के बतावा शंभू जी कि कितना प्रकार के जो प्लान बातें सब्जी बातें हमने मंगाए ला जाए पोते कर जाए, कितना प्रतिशत हमने मंगाए ला जा ये सब जो अभी लोकल प्लॉन्स के बात हुआ था, कितना चीज हमने मंगाए ला जा।
1: अच्छा देखा जन हमने बोला सब फ्रेश वेजिटेबल्स
0: जी,
1: किसे गाजर खा लो गोभी खा लो वगैरह वगैरह ये सब हमने ऑटोसफिशिएंट है सर, बाहर से नहीं मंगाएला सर, मंगाएला सर जब एगो कमी होला जब जैसे एगो एगो तूफान चला बर्बादी के जन जन कृषि बातें वो में हानि पहुँचल तब जाके मंगाला, लेकिन ऐसे जब मुझे सर फ्रेश वेजिटेबल्स वो हमने ओटो सुविधा है सब
0: जी।
1: एक आध गोवन सर ओके बोला सीजनल क्रॉप्स जैसे बा आलू प्याज लहसुन वगैरह और उतना भी नहीं नहीं सकेला सब पूजा करे जितना चाहेला, कैसे आलू के शायद 26,000 टन हमने के चाहेला तो उतना नहीं पूजा के ला सर, तो ये पोते होला और ये जन्मा आलू प्याज और लहसुन सीजनीय भी होन सर
0: जी,
1: तो एगो एगो एगो मौसम रहला जब रोपी ला जा कैसे अप्रैल से लेके सितंबर तक लगभग, तब ओकर फसल तर सकेला जनवरी महीना या फरवरी महीना में भी चलता है, तो लेकिन लेकिन सीजनीय है तब ओकर बाद नहीं सकब सर रोपे
0: जी,
1: तो कमी तो महसूस होला तो ऊ पहला

0: इसके पहला ऐप होते करके, फिर जो चीज में ऐप होते कहला सो खाएला सा फूड सबसे बड़का होकर में रहेला हम गेहूं और चावल
1: जी
0: लगभग हमार ख्याल से 80,000 टन तक सकेला हमने चावल ऐप होते कहला सा, और लगभग सकेला 150,000 टन तक हमने गेहूं ऐप होते कहला
1: सा। तो हर देखे में मोरिस एगो एगो ट्रॉपिकल आइलैंड है सा हमने, तो कोनो कोनो लावेनिया बातें हमने जब बात कर रहे थे जब फूड सिक्योरिटी मॉरिशन फूड सिक्योरिटी की हजे परी हमने के जो गेहूं बातें चावल बातें जे सकब सब रुपाए पैदावार करे
0: बिल्कुल, लेकिन जो प्रकार से तुझे चाहता हूँ नहीं देखा हमने के टापू जन बातें शुरू में बोले से ना हमने के माटी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता तो हमने लगे उतना माटी शायद नई बातें कि जब सा एगो रुपाई करे आटा खातिन या फिर चावल खातिन कुल मिला के देख बता जब मिले बता सकेला दो दो 225 या 250,000 टन के पैदावार करे
1: जी।
0: लेकिन हमने लगे हमने के टापू में अनेक ऐसा ऐसा चीज बा जन से सकब सा एकर एक हम प्लासे करे 100% नहीं लेकिन एगो ज्यादा मात्रा तक सकब जा कैसे। सबसे पहला हमने सकब सा अपन अपन जन भोजन माते जन भोग कैला सा ओकर में एगो बदलाव लाए
1: कैसे।
0: ई जन चावल और गेहूं बातें जैसे बोला सा एलो ग्लिसेमिक तो हो उतना खाए खाते उतना नहीं अच्छा हो तो एक ही सकब सा हम प्लासे करे कैसे हमने के जन डाइट बातें ओकर में सकब सा ओके हम प्लासे करे मानयोग से पतात से बतात से सकब सा फुयापे के भी प्रयोग करे तो ये लोग में ग्लिसेमिक नहीं होन सा तो स्टार्ची होन सा तो ओकर में तो स्टार्ची माना तो सकब सा जन जब जब भोजन करे ते को बुट बतात खाए तो कि सकब सा हम प्लासे करे।
1: हाई जन बात वह अभी बोले थे वह भाई शंभू हाय सकेला 10 जना में दुगो मानियन सा का कि मॉरिशन जो माइंडसेट बाते उस नए सक बदले
0: फैसिलिटी में पर
1: रात के वो लोग अपन चावल खावन सा खयन सा अपन रोटी वे खयन सा लोग के ई जो माइंडसेट पर बदले खाते तनु सुन लेता ले
0: एगो एगो एजुकेशन चाहला एगो अवेयरनेस चाहला का पर न्यूट्रिशन पर चाहला थोड़ा बातचीत करे के कि कौन में ज्यादा सुविधा बा कौन में ज्यादा हानि सकी तो हर अपन स्वास्थ्य के पहुंचे हाय खाली डायरेक्ट नहीं सकब सा खाए लेकिन सकब सा ट्रांसफॉर्म करे ओके आटा में तो कैसे अभी मान्योक में अभी देख लीजिए कैसे होता बेचाला तो महंगा बेचाला क्योंकि उतना पैदावार नहीं बा और उतना ओकर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता थे लेकिन एगो आज बाद में एगो एगो एगो विजन की तरह 5 साल में 10 साल में अगर हमने सकब जा हमने के मान्योक के ओकर पैदावार बढ़ाए स्वीट पोटेटो के बतात के बढ़ाए फुयापे के बढ़ाए ऐसा ऐसा चीज सकब जा बढ़ाए तो एक आटा सकब जा जो आटा आवता फ्रांसैक पूसा तक मिला के तब प्रयोग करे
1: तो अभी जैसे बोले तो हुआ
0: फ्रांसैक पूसा तो जिगे आज सकब सब पोटेंशियल बात फ्रांसैक पूसा जो ऐप पोते होता तो ओकर ऐप होता सो से कि घट जाए
1: जी
0: सुशांत सैक पूसा जो रगल बा चला सुशांत सैक पूसा सब नहीं लेकिन ओकर में से एगो पोषणता आज जगह खाप जा अनेक तरह के पकवान बाते जीवैसी सकब सब प्रिपारे करे ला क्विजिन करे ताजे सकब सब हम प्लासे करे ता सुशांत सैंक पूसा में चला आधा जे घट जाए यानी कि जो हो है पताशोमा बात सकेला खाली 30% तक रह जाए
1: ये 100% जो निमन बात बोले हवा हमने के जो प्ला में हमने के प्लेट्स में जितना चीज चाहेला पौष्टिक चाहेला हो के तोहर देखे में हमने आज डिसअपीयरिंग क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे जा तो कौन कौन क्रॉप्स बातें हमने के कल्चर में हमने के ट्रेडिशन में है जा परी मॉरिस में जो डिजर्व करे लंसा उन लोग के कम बाक हो की।
0: अच्छा एगो चीज बा जो हमने बोला सा पल्सर्स बस ही प्रोटीन सब वगैरह मिलेला तो एक एम्पोटेशन भी दे रहा एक में बातें जैसे गो पॉइंट पोते होला ची पॉइंट पोते होला हाँ कि नहीं तो शुरू में बोले रहा हमें लगे कौन चीज बाक पादेश्री वो बातें तो ओकर में से हाउ एगो चिपवा के तेने रहला तो वही तो सकब सा पकाए या फिर अच्छे जब तान रहला तो सकब सा पकाए एगो दूसर बात जस्ती जो आजकल नहीं है लौकेला अम्ब्रेवाद पहले हमने के आंगन में रहा तो अम्ब्रेवाद में एगो छोटा सुन पौधा है

0: ओके ताई ताई करब छोटा ही रही तब में हो जन पज मिलेला तो जब जुआ जला हरियर हुए माँ लेकिन जुआ जला तो खोल के निकलब तो में सिकुंच मिला तो छिपवा कर मिली पा गए। अब देखो दूसर बात है पौधा ने हा उसे जो नी हा वह बुकला
1: जी
0: तो और नहीं रोकेला।
1: हमने माटी के मूल कार्यक्रम कर रहे रही सर और इस सब के बारे में जैसे अंपवाद पाशीष जैसे बोकला की बात कर रहे थे वह आज हमने देखा था ऐसा जो नपलौते वो सब हवन सा कई जना वो लोग कल कल एक कुभागाशो अब कर रहे थे हवन जब फिर से
0: जो इंतर प्रोग्राम के इलाके से माटी की मूल करते आज जैसे जगह पर एक पर वार्तालाप करते हैं सर तो यही से तो पर कैसे बोला क्यूरियोसिटी जागी ना तब जाके आदमी लोग जाने की अच्छा हयू कहाँ पर मिली कहाँ पर किनब ऐसे बहरहाल पल्सर्स पर थोड़ा सा उदाहरण देनी स्टार्च पर तब बोलनी जैसे मनयोग बातें बतल बातें बातें तब मिली। अब देखा और एक आध वैसा चीज बा जो नहीं रोकेला आजकल लेकिन हमने जब शादी रहला या उत्सव रहला तब के आचार की तरह या कुच्चा की तरह प्रयोग केला जैसे

0: अब रहेला ताको के आचार की तरह या कुच्चा की तरह प्रयोग केला सा जैसे सुर ममार आए चंता के आचार बनावा
1: मन की जे सोचबो त हमनी के देश में ढेर चीज रहल जो हमनी आज बोलत है जा सकेला अब नए लोग था अब हमनी तरस जायला सा एगो काहबुल खाए के एगो सौबला खाए के परी बाजार में जाए के न त एगो मौसम आए हबी तब भगते भगते लोग को पीछे जमनी जाप सा
0: लेकिन तू जाने ला ओ खातिन तू तरसे ला
1: हां
0: त जे जे नहीं जाने ला कहां से तरसे
1: ये तो प्रॉब्लम है
0: तू नहीं जानी ओ तो के पूछ कहा त फैसिलिटी में फैसिलिटी में अपन चला एगो एगो जन एगो रसोई घर बा अब देख पा वीरे तो उन्हें जैसे बोला सा एक एगो एक हफ्ता में हवे पकेला सोच के बोल जा निमन से हवे लिशु पकी शुशु पकी वगैरह वगैरह
1: एगो वही थे जैसे नई बातें
0: हाँ ता एगो जस्टी वही थे चाहेला ता हम किसानों के मांग करती आज सकबा जा बुकला अभी लिवे में सब बुकला के आज सक बाजार रुपए और भगवान सक बाजार रुपए सुरन सक बाजार रुपए एगो बढ़िया चीज रहत
1: त जे हमनी के जितना जना हमनी के दादा दादी हबी लिखावन जा जे तो लोग लगे घरे लैका सब बातें तो लोग के बचाइया कौन ची हाँ विवाद कैसे रहल आगे का अपन जमाना कैसे बितावत रहला कौन ची खात रहला जब मैं उ लोग के योजन लेते गए वा बा उ बढ़ी और उ एगो जना हवन फोन पर उनका से हमने बचाए ला जा हेलो नमस्ते जी
2: नमस्ते भैया से बोले नमस्ते
0: नमस्ते
2: दोनों जना के कर कमरों में नमस्ते बोला था
1: जी नमस्ते, नमस्ते। बोला चाची
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख लेगा अभी तू चलता के बाद देख लिया चलता के जब बोला तभी मैं पानी भर गया लगा जाने ना हम डल्ले है हम खाइले है सा
1: जी
2: तो ककारी भी पकेला
1: अच्छा
2: तनिशन मेहनत था ओकर में मेसेज में बहुत अच्छा तू तो हर किसी के आम छोड़ दे बाकी चलता बात और अब ये कहाँ मिली
1: मुंह में पानी भरा ला भी
0: चला के खुश के खाए
2: आम ही खाई जाए कैसे भैया बड़ा था जे नहीं जाने ला जे नहीं खेले बात का जाने
1: सच्ची
2: नहीं जाने बात नहीं जानी फिल्म है पहले की चीज जो रहा बहुत सवाल चालू है अभी मानियो बात आपसे बोला भाई मानियो बात खाई जाता भात नहीं खाई जा एक बुध खा लेला में शांति से सूचित
1: चाची हमनी के बताओ तू आज खा ला बता खा ला मान्यो खा ला
2: तू है बोला तो
0: अच्छा हमने के चीज बोला हमने तो यहाँ पर चर्चा कर ली जा अनेक प्रकार के जो फल बातें सब्जी बातें तोहरा तोहर ता जैसी अनुभव बाते ता एक आध गो जन तोहरा याद बाते एक आध गो फल सब्जी जो आजकल तन को भी नहीं लौके ला
2: देखा एक गो चीज हमरा याद बाबी तू नहीं है मोवा बोला उसाई के बूत नहीं जा
1: उसाई
0: हाँ
2: उसाई के बूत नहीं जा उतना बरखा मिक्सिंग है जनिया में के जावे पहुंचो के अब वो चीज तनी जहर है जहर उसका नहीं है ओके खाए के जाने चाहिए और जो पौध जैसे जितना तोहरा अच्छा लगी खाई के
1: ढेर जना नहीं जाने लन हमने के दीपिका बोला था एक और जना हवन चलो उनका से हमने बताया जा हेलो
3: नमस्कार
1: नमस्कार जी
3: जी मैं आपके कार्यक्रम में कुछ कहना चाहती हूँ हमार द्वारी में बाबा बा बहुत बहुत बाबा हम तो तुर्क सब की बाटी ला दे
1: पकावे ला
3: पकाई ना हाँ अली सुफले में डलब सुसु आलू में डलब बैगन में डलब घुगनी पका देब ओके भूई करके लड़का लोग बहुत खुश रहला खाई के।

0: On tag biba, gros pas bi plante les reins. Et quatre ganchi banane biba. Et manioc biba. Konda ke bhaji ba. Hum sab rok liya.
1: तोरा नहीं परेला बाहर जाके किने के तोरा सब
0: कुछ तो जीते जीते हम ही रोपले हैं जीते खूब होवा मारिया
2: नीचे शाबत आ माटी के मोल के प्रोग्राम में की तोहर लगे आ
1: तो चल माटी के मोल कार्यक्रम तोहरे लगे हम से करे
0: धन्यवाद आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा था चाची लोग के सुन के उन लोग के आंगन में हबी लेख बोला था वन अपवाद बाटे हाँ वो लोग सबके बटा बाटे लन खा लन सुफले में डाल के और चीज आज तक मुंह में पानी हुए भर जाए अच्छा लगे था बहुत बहुत धन्यवाद चले एगो फटाफट म्यूजिकल ब्रेक लेके हमने वापस आइला जा

0: हाँ आज की चर्चा कार्यक्रम हबी तनी सुन बखत बातें जे कुछ हो पूछे के बातें फिर से हमने याद दिला दिला जा हमने के नंबर है 402-84-85-402-80-85 पर हमने के बढ़ जाना लोग हबी बता तो वन जहाँ अपवाद बातें आंगन में ढेर चीज बातें हो लोग लगे तो चला हमने के फोन करिया शेयर करिया कौन सी बातें और कौन कौन से देवा आगे जो हमने के जिनेगासो तो हो लोग के सुनत हुआ जा देखत हुआ जा वो लोग जानियन जा हमने के जो डिजापियरिंग क्रॉप्स कौन ची है एक और कैसे चाहेला उन लोग के पोते से करे के फिर से उन लोग के आने के दीपशिका बोला था वन भाई शंभू एक और जना हवन चला उनको से बताएला जा हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते नीचु साची और मेहमान को भी नमस्ते
0: नमस्ते भाई आजी बोला
1: लोग एक गंभीर विषय पर बात कर रहा हुआ हम खुजा थे अपन लेट्स पे यहाँ
0: जरूर
1: हमने के जो अभी जो चीज मिला था मैं एक बात बोला कि आगे के जिंदगी में कुछ चीज उधर ले वो औषधि के रूप में काम कर रहा था बाकी का है केमिकल नहीं रखल आज सब पियो जैसे अमरता के तौर पर यहाँ पर कच्चू भाजी सुसु भाजी अरुण जोले वाटाक माजियो भाई सब बोले ऐसे बोल जला दांता
2: दांता
1: बेला एक उचित हम के पुरानिया लोग भूखा भी लौटा लगता लगता हम नहीं लगे भूखा भी लौटा था अभी तो लोग ऐसे बात बात सुगन ऐसे बोल जला कौन बोल सुतु ये सब जाओ अब लेबा आई आचार के चीज डाल पर तस्वीर प्रिंट दीवार सही फ्री रही तो जो कौन मौत आ गई ऐसे पौगा था इस सब सब अजी लौटा था जैसे हमने चाय के पत्ती के बोला जा तो औषधि के रूप में कोई चाय चाय चूरे हमने लगे तो अपन मुंह में देते था तो पत्ता डाल दे तो वो पेट में जो कीटाणु बहु मार तो ऐसे ऐसे हमने के पुरानिया लोग ऐसे जिया चला जा आज हर एक जना से अभी अमर लाभ में अध्याकर बा पुदीना बा आरे फूले बा सुसु भाजी बा एक बा सौपारक बा सौपूस बा साबुका बा ये सब लाइची भी बा बनान भी बा से ना हम इन्हें कुछो चीज में दवाई नहीं डाली सुसु सुसु सब चीज में दवाई नहीं डाली था
0: जी
1: तो हम हमारे अच्छी बा कि जे अजी लोग अपन द्वारी पर थोड़ा थोड़ा सही माये से प्लांटिंग कर चिपवा मलाती अति सो कहो थोड़ा में थोड़ा कम हो जाएगी आगे के समाधान
0: जी
1: कैसे कैसे के पूरा ध्यान की सब प्लांट हम ही तक खेले आए हमारे बाप आर सब भी ले हैं खाई लग सकते ऐसा सावा ऐसा चट्टाक से बोलने जाना खाई लग गया तो थोड़े बस ये हमारे तिलाल पौधा के करेंगे आप सभी को हम सुना था और शुभ दिन और प्रोग्राम बने दे रहे
0: बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी और शुभ दिन तोरो अच्छा लगा था सुन के जब चाचा जी बोला था वन बुझा था हाउ विजन वा सामने आल बाती
2: हाँ, जैसे बोला था वन एक आदगो फल के नाम ले लन जो अब हम किने लोकेला तन को ही ने लोकेला बिबास हम लगे था हल पहले तब कम से निकाल के आचार डलवा करंडा
0: जी
2: करंडा या लौटा ने लोकता और एक चीज बोलन चाचा हमने यही पर ही बोल दिला जा और हमने के आंगन में पहले कैसे आजकल तक जहाँ देख बता क्लिनिक दुखती है डॉक्टर के पास जाए था पहले हमने के आंगन में एक आठ गो चीज ऐसा नहल जो हमने प्रयोग करते जा हमने कैसे खांसी होए वगैरह वगैरह होए तो इस प्रकार से आया पाना रहल ये भी चाचा अभी भैया बोलन जैसे पास आए अज्ञाकर किसी को ने अज्ञाकर पान पान के पत्ता ओके ओके तवा पर डाल के गरम करके निचोड़ के कर रस निकाल के या भी ले हुआ ला तो ऐसा अनेक चीज बातें जो नहीं लोग किला आजकल
0: जी
2: ये भी
0: इस अच्छी बात बोला था हुआ हमने

0: आज तो हमी मलाट हो जाला सर, बीमार हो जाए, दर्द होगी ला सर, डॉक्टर लग गए क्लिनिक जाला सा, हाइजा हो जा।
1: पहले जब घाव लगत हल त एगो एगो पौधा हल बेलजामिन,
0: बेलजामिन पीस के ऊपर जूस
1: हाथ से हां पीस के तब के जहां घाव लगल बा रख दे सर, या फिर एगो जो है पौधा ला टूटल
0: जी
1: तो ओकर भी पत्ता पीस के सकप से डाल दे। और एगो आप पल्हा, पल्हा एगो पेड़ है जो लड़ लड़ एगो चीज निकला, वो भी प्रयोग बता
0: ढे चीज रहल हमने जानत रही जा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ इग्नोरेंस अकेला हमने बोलब स कि जो हमने के आज के जो माता पिता हवन स वो लोग ही नहीं जाने लन स, तो वो लोग अपन लड़का के कौन सी बोलन स। तो जितना घर में दादा दादी हवन जब हमने के बरजना हवन जा बुजुर्ग हवन जा हमने तो मांग करती जा हाँ अपन लड़का के अपन नाती पोता के तू सिखावा दिखावा कौन ची है आगे कौन ची रहल आजू सब जब देखियन स जब बोलब तब जानियन स ना। तो हमने बात करे थे जहाँ भी क्लाइमेट ऑफ चेंज हो गल बातें, चेंज ऑफ क्लाइमेट हो गल बातें, सब कुछ बदलते जा बातें। और आली मौत हमने बात करे थे जब फूड सिक्योरिटी तो है जो लोकल क्रॉप्स बातें वो लोग के ढेर महत्व बातें काहे कि एगो सकम से बोले विन-विन सिचुएशन बातें हमने के जितना खेती हर और हमने के पर्यावरण को खातिर।
1: बिल्कुल चाहे तो अभी जन हमने के जन खेती बाड़ी बातें जरा तक जन बोला सा बाहर के सेमो सेमो इब्रिड पर निर्भर बातें
0: जी।
1: तो ये लोग हाई परफॉर्मिंग वैरायटीज हों सा जेकर जेकर खातिन चाहला तोरा बहुत रिसोर्स डालेगे, बहुत पानी, बहुत खाद, बहुत ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह। तो देख बात सकेला गो गानमा जस्ती मिलत हुई पैदावार सकेला ज़्यादा हुई थोड़ा बहुत, लेकिन देख रहे कितना ले पहला कह रहे कि उनका जितना खर्चा होला बहुत रहला। और ये लोग हाली से स्ट्रेस है वो भी होना चाहिए, आज तनी सुन पानी नहीं दिला था फ्लिट की जान सा बेहतर रहत कि हमने एगो एगो विजन की तरह एगो रिवाइवल रहत कि हमने जन जन प्लान लोकली अडाप्टेड बातें तो वो तो यहीं के है ना अडाप्टे बातें आज ओकर दे ओकर खेती बाड़ी करब जा तो उतना देख रेख नहीं मांगेला। हाँ एगो एगो न्यूवो वाइटे इब्रिड कैसे एगो फूल गोभी के लेबर सकेला हुआ है पोते सकेला इतना बड़ा होते हुए हाँ लेकिन नहीं बड़ा होते हुए इब्रिड है सकेला हमने के लोकल भी बा वाइटे लोकल फूल गोभी के उस सकेला इतना बड़ा नहीं होते हुई टेंशन मुआयें होते हुए लेकिन देख रेख में उतना उतना चीज नहीं पहले डाले के उतना खाद नहीं पड़ी डाले के उतना पानी उतना रासायनिक पदार्थ नहीं पड़ी डाले के। तो इन दी एंड जैसे बोला सा हमने हमने तो के कर में विनर बातें हमने क्योंकि थोड़ा उतना रासायनिक नहीं मिली खाए के वगैरह वगैरह। और एक पर एक चीज़ अगर बोले हमने के बीजे में एगो एगो चीज शायद ढेर कोई नए अगर मौके कर ले हो एगो नीमन चीज बाई वो का नाम है 25x35 विजन, यानी कि लाने 2035 ले हमने के चला 25% जो हमने पोजुए के इलासा चला मिनिमल एग्रीकल्चरल इनपुट से पोजुए करेंगे।
0: तो अभी जैसे बाल बोला था हुआ चाहेला मिनिमल इनपुट हो के
1: यानी कि मिनिमम खाद मिनिमम पेस्टिसाइड मिनिमम वगैरह वाला देखो विजन है तब चाहेला एक कर पर
0: जब एगो विजन रहेला तब एगो मिशन वे हो जाला तब अपन मिशन के सक्सेसफुली ले जाए खातिर चाहे लागे वो वोलोंते चाहे लागे विजन और सरकार फागे हमेशा हमने के जितना खेतिहर सब हवन जाओ लोग के मदद पहुँचावेलन। तो अभी ढेर जाना था सकेला तुहरा देखत हवन सुनत हवन वो लोगों के मन बा अब इस सब के बारे में सुनन जो तक बोकलास है हो तो वो लोग के मन बा अब रोपाए करे के वो लोग कहाँ जानियन सर बाते मोरिस में सब
1: नहीं बाते हबी ले बाते जहाँ तहाँ लोग किला गाँव में खास कर जे बता थोड़ा लोग किला तो दो जगह से सकल ऐसा प्रबंध करे एक तो देखा कैसे अभी भैया जी बतेलन चाची बतेलन वगैरह वो लोग लगे बातें तो तू अगर आस पास में हुआ पर ही हुआ तू जाने ला ऐसा ऐसा चीज बातें तो हम बोलती जाके भैया या चाची के भेंट करे के बोला देखा हम कितनी सुन सकेला बीज मिले या बुछिया मिले हम घरे रूप अब ऐसा ऐसा आदमी जो बातें एक उपाई करते हम 100% से कब बोले कि हंस हंस के खुले दिल से दियन सा थोड़ा जाके अपन घरे रोपे के हाँ एगो चीज। दूसरा कृषि मंत्रालय के नीचे एगो संस्था बाते नाम बर्कली एक्सपेरिमेंट स्टेशन बर्कली में हाँ 467NF50 ओकर नंबर है 467915 तो वहाँ पर ही अनेक प्रकार के

0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। सेशल्स की राजधानी माही स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच साझा हितों और इलाकाई सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस वर्ष पोर्टवी में मॉरिशस सेशल्स संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक आयोजित होगी और सेशल्स मॉरिशस में एक उच्चायोग भी खोलेगा। वहीं कल रात सेशल्स ने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ इस्तादलिनीते में भव्य समारोह के साथ मनाई, जिसमें राष्ट्रपति एमिनी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को देश की प्रगति का अहम आधार बताया। कल की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका तेजी से बढ़ने वाली है। मॉरिशस में नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के इर्द गिर्द धीरे धीरे एक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। बजट 2026-2027 में इसे समर्थन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें स्टार्टअप एक्ट और ईडीबी में एक्सेलरेटर स्कीम आदि शामिल हैं। एमसीबी पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस के इस बैंकिंग ग्रुप ने अबिजान आइवरी कोस्ट में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहल इस तेजी से बढ़ते देश के प्रति मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जिसे आज अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक माना जाता है। और विदेश में अरुणाचल प्रदेश में पूसा में बादल फटने की घटना के एक सप्ताह बाद भी भूस्खलन और बाढ़ से हुई क्षति के कारण होज पुटीन राजमार्ग बंद हैं। इस मार्ग के बंद होने से 7 जिले कट गए हैं, जबकि बारिश, ईंधन की कमी और गहरी घाटियों के कारण मरम्मत का काम धीमा हो गया है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 4 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: Aapke sitare.

सोमवार 29 जून घड़ी मिला लीजिए सपेर के 4:02 हो चुके हैं। आप सभी का वेलकम है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। आप सभी का साथ देने के लिए हम आ चुके हैं अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है हम आपके सितारे इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए अभी से लेकर जो है यहाँ पर शाम के 6 बजे तक चलने वाला है आपके सितारे ये प्रोग्राम। और आपको तो पता ही है एवरी वीक किसी न किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी पर हम बात करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार पर जिन्होंने संगीत की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। ऐसे तो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन जो है इन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। 60 से लेकर 90 के दशक तक फैले अपने करियर में इन्होंने इतना कमाल का कंपोजिशन हिंदी सिनेमा को दिया है कि क्या कहे। जी हाँ, आज का हमारा जो आज आपके सितारे प्रोग्राम है ये होने वाला है राहुल देव बर्मन साहब पर। तो ऑब्वियसली गाने तराने तो बेहतरीन होंगे ही, इनसे जुड़ी कुछ बातें भी हम करेंगे। अभी के लिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: के सितारे।
1: तो चलिए, दिस वॉज द ब्यूटिफुल ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी, ओ मेरे दिल के चैन, किशोरदा की आवाज़ में। और आज हम बात कर रहे हैं आर डी बर्मन साहब के बारे में। 27 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि दो दिन पहले, एक दिन पहले इनकी जन्मतिथि थी। तो आज आपके सितारे इन पर ही बेस्ड है। इनके खूबसूरत गाने हम आपके लिए चलाएंगे, इनसे जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4028070 है नंबर हमारा, और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250600 पर। ऐसे आर डी बर्मन साहब की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर रह चुके हैं। ये जो है वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर्स में इनकी गिनती होती है। 1960 से लेकर 90 के दशक तक इन्होंने काफ़ी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए संगीत दिया है, और ये नई नई चीज़ों से संगीत निकालने में जो है काफ़ी माहिर थे। और जो है इन्होंने ज़्यादातर काम

किशोर दा, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब जैसे बड़े बड़े गायकों के साथ किया है। और अगर लिरिसिस्ट की बात करें तो मजरूह सुल्तान परूई, अनन बख्शी, गुलजार साहब जैसे बड़े बड़े लिरिसिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है। ऑब्वियसली इन्हें प्यार से पंचम दा कहते हैं। और ये जो है एस डी बर्मन साहब के बेटे हैं। और चलिए कुछ और बातें जोड़ेंगे, अभी के लिए हो जाए ये खूबसूरत सा तराना, यादों की बारात, इस फिल्म से लिया गया आप सभी के नाम।

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
1: परसों बादलों खिलने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सर्दी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत

0: के सितारे।
1: जी हाँ, ये था खूबसूरत सा तराना, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, आंधी फिल्म से लिया गया। आर डी बर्मन साहब के करियर की बात करें तो सचिन देव बर्मन साहब के ये बेटे हैं और बचपन ही से जो है इन्हें संगीत में बड़ी दिलचस्पी रही है। ऑब्वियसली होगी भी क्यों नहीं, इनके पिता जो इतने महान जो है संगीतकार और गायक रह चुके हैं और इनका नाम जो है पंचम वो भी म्यूजिक स्केल पर ही आधारित है, जब लोग इन्हें पंचमदा कहकर पुकारते हैं। चलिए बर्मन साहब की बात करें तो ये बचपन से ही इन्हें जो

है संगीत में काफी रुचि रही है और इनके म्यूजिकल करियर की यदि हम बात करें आरडी बर्मन साहब ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी 1961 की फिल्म छोटे नवाब से जहां पर इन्हें छोटी मोटी जो है कामयाबी हासिल हुई थी उसके बाद इन्होंने फिल्म में संगीत दिया भूत बंगला तीसरा कौन पति पत्नी जैसी फिल्म लेकिन वो फिल्म तीसरी मंजिल थी तीसरी मंजिल जिसके ज़रिए इन्हें जो है वो कामयाबी हासिल हुई जहां उसके बाद इन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा तीसरी मंजिल इस फिल्म की बात करें तो शमी कपूर साहब और आशा पारेख जी इस फिल्म में नज़र आए थे ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ये जो गाना है इनके करियर के सुपरहिट गानों में जो है गिना जाता है चले तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना हो जाए

You're listening to RM3 Radio Manoran.

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे जहां पर कमाल के गाने तराने तो आपके लिए चल ही रहे हैं, साथ में आपका प्यार भरा साथ भी हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। ऐसा जो है देखते ही देखते शाम के 4:45 बजने को है और जहां कहीं से भी साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। चलिए आडी बर्मन साहब के कुछ गाने आपके लिए चला रहे हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपके से हम जोड़ रहे हैं। ऐसे तीसरी मंजिल इस फिल्म के बाद जो शोहरत उन्हें मिली, उसके बाद मानो एक के बाद एक और जो है कमाल का संगीत ये देते गए और जो है लोगों के दिलों में अपना घर करते गए। और इनके संगीत जो है एक समय के साथ कुछ ऐसे वेस्टर्नाइज म्यूज़िक के साथ इंडियन म्यूज़िक को जोड़कर ये संगीत बनाने लगे जो हिंदी फिल्मों में पहले नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी रेवोल्यूशन इन्होंने संगीत की दुनिया में लाया है और लोग इनकी इसी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया करते थे। ऑलराइट, अब चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। पड़ोसन फिल्म का जो अगला तराना है हम आपके लिए चलाने वाले हैं, पड़ोसन फिल्म का ये जो अगला गाना है, पड़ोसन फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। ऑब्वियसली फिल्म अपने आप में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें सुनील दत्त थे, साथ में महमूद थे। फिल्म तो कमाल की थी ही, फिल्म कमर्शियली काफ़ी जो है सक्सेसफुल तो हुई ही थी और फिल्म के गाने भी बड़े लाजवाब थे। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इस फिल्म का एक गाना हो जाए आप सभी के नाम।

0: आपके सितारे
1: यस आपके सितारे और देखते ही देखते आपके सितारे का जो फर्स्ट आवर है वो खत्म होने को चला और आरडी बर्मन साहब के बारे में जितना कहे कहते हैं ना उतना ही कम है और अभी अनामिका फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे ऐसे पड़ोसन इस फिल्म के बाद इन्होंने काफ़ी हिट फिल्में बैक टू बैक दी 1969 इस साल की बात करें तो वारिस प्यार का मौसम जैसी फिल्म और वहीं शक्ति समानता की फिल्म आराधना इस फिल्म को इस फिल्म के गानों को कौन भला भूल सकता है ऐसे तो फिल्म की कहानी भी बड़ी जो है कमाल की रही और फिल्म में जो संगीत इन्होंने दिया फिल्म में जो गायकी थी किशोरदा की और फिल्म में जो एक्टिंग थी राजेश खन्ना साहब की मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में इतना कमाल का है कि क्या कहें है ना तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए हम आराधना फिल्म का ही गाना आप के लिए चलाएंगे और राजेश खन्ना साहब अपने आप में सुपरस्टार अकेले तो नहीं बने ना ऐसा संगीत हो ऐसे गाने वाले हो उनके लिए ऐसी स्टोरी लाइन हो तब जाकर तो कोई स्टार सुपरस्टार बनता है तो कहीं ना कहीं इन बड़े बड़े अलग अलग अन्य कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और बर्मन साहब की बात करें तो 60 का दशक इनके करियर के लिए जितना कमाल का रहा 70 का दशक भी इनके लिए उतना ही लाजवाब रहा

0: आपके सितारे
1: चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम हम करते हैं रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो सो मच इन खूबसूरत गानों को सुनते सुनते कब एक घंटे का ये जो सफर रहा खत्म होने को चला पता ही नहीं चला ना खत्म हो गया और ऑलरेडी सेकंड आवर में हम आ गए शाम के 5:05 हो रहे हैं दिस इज योर आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन और आज आरडी बर्मन साहब पर हम बात कर रहे हैं और उनके खूबसूरत कंपोजिशंस जो है आपके लिए हम चला रहे हैं इस समय सरिता जी कटरबोन से साथ दे रही है कह रही है कि खाना बना रही हूँ और गाने भी सुन रही हूँ और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है तो बस एंजॉय करते रहिए साथ देते रहिए ये अगला तराना खासकर सरिता जी आपके नाम हम करते हैं

चले आपके सितारे और आपके सितारे में इन गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सात 5:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। 70s के सालों की बात करें तो ये साल भी जो 70 का दशक भी जो रहा है आर डी बर्मन साहब के लिए काफ़ी कमाल का रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा, कारवा मेला, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, अपना देश, रामपुर का लक्ष्मण, परिचय, सीता और गीता जैसी फिल्मों से जो है एक के बाद एक सुपरहिट गाने ये देते गए। इन सभी फिल्मों के गाने अगर हम चलाने लगे ना आज तो ये 2 घंटे का प्रोग्राम मानो 2 घंटे में ख़त्म नहीं होगा। इतने सारे गाने हैं आर डी बर्मन साहब। तो चलिए अभी के लिए जो अगला गाना हमने आपके लिए चुना है वो है बालिका वधू फिल्म से लिया गया बड़े अच्छे लगते हैं। अमित कुमार साहब और साथियों की आवाज़ों में ये तराना है और जैसे बहुत सारे कलाकारों के जीवन में होता है ना कि उतार चढ़ाव उनके जीवन का उनके करियर का हिस्सा होता है तो इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे ही रहा। 1976 से 83 के बीच में जो है इनके करियर को एक सेटबैक सा मानो लग गया और जो है कुछ फिल्में जो हैं जिन इन्होंने संगीत दिया वो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और फिर काफ़ी इंतज़ार इन्हें भी करना पड़ा और उसके बाद इन्होंने बेशक कमबैक भी किया। चलिए उसके बारे में थोड़ी देर में कुछ और बातें करेंगे। अभी के लिए ये गाना यहाँ पर चल पड़ा है आप सभी के नाम बालिका वधू इस फिल्म से लिया गया।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: के सितारे।
1: ऐसे हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम आर डी बर्मन साहब की बात करें तो आपका गाना, आपके लिए उनका कौन सा गाना जो है आपको बहुत पसंद आता है। ऐसे 80 का साल बाद में जाकर इनके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहा, जहां पर इन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्मों के लिए संगीत दिया, जैसे कि बॉक्सर, सनी और झूठा सच, जागीर जैसी फिल्में। इस फिल्म में काफ़ी ऐसे गाने रहे जो आज भी यादगार है, आज भी पॉपुलर है। और आर डी बर्मन साहब के बारे में अगर इनके निजी जीवन की बात करें तो ऐसे आशा भोसले जी के साथ इनकी शादी हुई थी, दोनों ने एक साथ काफ़ी जो है फिल्मों में एक साथ काम किया है, मतलब काम किया यानी कि एक ने संगीत दिया है और एक ने ऑब्वियसली गाना गाया है। इनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो रीटा पटेल थी। और चलिए यहाँ पर एक मैसेज भी आया है, देखते हैं कौन है यहाँ पर। प्रणाम स्वीकार करने, ये हमारे भाई माहेन हैं कह रहे कि पुराने नगमे सुनकर उन्हें अच्छा लगा और पुराने गाने से यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल, ओल्ड इज़ गोल्ड इसलिए तो कहते हैं ना। ऑलराइट, जो गाना आपने मांगा इसे हम चलाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप हमारा साथ देते रहिए माहेन जी, अगला गाना आपके नाम और आपकी पूरे फैमिली के नाम हम करेंगे यहाँ पर। और अभी जो गाना हम चलाने वाले हैं ये गाना जो है सनी, इस फिल्म से हमने लिया है। ये फिल्म में भी जो है इन्होंने संगीत दिया था और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी कमाल के हैं, जैसे ये गाना जाने क्या बात है। ये गाना सिर्फ हिंदी में नहीं, बंगाली में भी ये गाना बना है और ये गाना जितना हिंदी में सुनने में खूबसूरत है, उतना अन्य भाषाओं में जब ये गाना बना है तो ये भी उतना ही खूबसूरत है। सनी, ये जो फिल्म है ऑब्वियसली इसमें नज़र आए थे सनी देओल, साथ में थी अमृता सिन्हा। इस गाने को लता जी ने गाया है।

चलिए अभी के लिए 1942 अ लव स्टोरी इस फिल्म का गाना यहाँ पर चल पड़ा है। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म का जो संगीत था, ये जो है आर डी बर्मन साहब के करियर का आखिरी जो है फिल्म में संगीत इन्होंने दिया था। और इस फिल्म का संगीत भी बड़ा ही लाजवाब रहा। ऐसे आर डी बर्मन साहब के बात करें तो 4 जनवरी 1994 को

दिल का दौरा पड़ने से जो है इनका निधन हो गया था। और कहीं ना कहीं बड़े कलाकार ऐसे होते हैं कि जिनके जाने के बाद भी उनकी कला द्वारा जो है उनको याद किया जाता है। तो आदि बर्मन साहब भी ऐसे ही कलाकार हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन 1983 की फिल्म सनम तेरी कसम, इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला था। वहीं पर 1984 की फिल्म मासूम के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। और 1942 लव स्टोरी, इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए भी इनके निधन के बाद इनको अवार्ड मिला था। तो चलिए अभी के लिए इसी फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी के नाम।

0: के सितारे
1: और चलिए इसी के साथ आपके सितारे इस प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं। दो घंटों का ये जो सफ़र रहा जहाँ पर आर डी बर्मन साहब जी के बारे में हमने बातें जोड़ी, उनके जो है कंपोज किए हुए गाने चलाए, और उम्मीद करते हैं ये दो घंटों का सफ़र आपको ज़रूर

0: पसंद आया होगा जाते जाते सनम तेरी कसम, फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सभी के नाम हम करते हैं। और इसी के साथ जो है आपके सितारे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार भरा साथ हमें आज भी मिला इसके लिए। आपके मैसेजेस के लिए धन्यवाद, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। और ये जो अगला तराना है सनम तेरी कसम फिल्म का ये टाइटल ट्रैक, ऑब्वियसली इस फिल्म में संगीत आर.डी. बर्मन साहब ने दिया था। इस फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था और इस गाने को किशोर दा ने गाया है। सो इसी के साथ आज के लिए हमारी मुलाकात अभी के लिए बस इतनी ही। थोड़ी देर में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, थोड़ी देर में फिर आपसे हम जुड़ेंगे। तो इस गाने के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। 6 बजे जो है पूरा समाचार चलेगा, साथ ज़रूर दीजिएगा। हमारी ओर से नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। ऐसे ही साथ देते रहिए ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर आपके सितारे। और मिलेंगे आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर अब हम अगले मंडे को।
1: आपके सितारे।

0: 6 बजे हैं। नमस्कार, सोमवार 29 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। माहे के स्टेट हाउस में सीशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने साझा हितों और इलाकाई सहयोग पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस बीच सीशेल्स ने स्टार्ली नीति में भव्य समारोह के साथ अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई। आजसू अधिकारियों ने पहली बार प्रेस को संबोधित करते हुए 2026-2028 के रणनीतिक योजना के तहत 2026 के पहले 6 महीनों के जब्ती आंकड़े, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा से जुड़े परिणाम प्रस्तुत किए। बजट के तहत स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में शामिल करना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को स्थापना लागत का 25% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना से लगभग 3,600 परिवार लाभान्वित होंगे और पात्रता मानदंड जल्द तय किए जाएंगे। इस गुरुवार संसद के बाहर श्रमिक संघों के एक मंच ने तख्तियां और नारेबाजी के साथ पेंशन सुधार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नई प्रणाली श्रमिकों पर अतिरिक्त बोझ डालती है और एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालती है। पश्चिम अफ्रीका में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए मॉरिशस की बैंकिंग ग्रुप MCB ने आइवरी कोस्ट के अबिजान में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले इस देश में मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। और विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के अनुसार यूरोप में आई अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव के कारण 21 जून से अब तक 1300 से अधिक असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं। जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य समेत कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। पेशाब समाचार विस्तार से। माई स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह सीशेल्स और मॉरिशस के साझा हितों पर चर्चा हुई। पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से अनिश्चित वैश्विक संदर्भ में अपने सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। मॉरिशस सीशेल्स संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक इस वर्ष पोर्ट लुई में आयोजित की जाएगी। मॉरिशस सीशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। वैलेरी काली, अदिति अवतार।
1: विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को सैन्य सलामी दी गई। ये सम्मान सेशेल्स के इतिहास के इस महत्वपूर्ण घड़ी में मॉरिशस की भागीदारी के लिए सेशेल्स की तरफ से सराहना और कृतज्ञता दर्शाता है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने लिनिटे स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय पैरेड के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी को बधाई दी। मैंने इस आमंत्रण के लिए आभार प्रकट किया। कल का शो एकदम अनोखा और अद्वितीय रहा। इसके अलावा हमने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों छोटे टापू देश सिज के सदस्य हैं और हम दोनों ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा सेशेल्स भी हमारी तरह ईंधन सप्लाई की समस्या झेल रहा है। बढ़ते दामों के साथ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे की जा सके। इसके बाद दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की, जैसे जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे छोटे विकासशील टापू देशों की स्थिति तथा मौजूदा कठिन और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच सहयोग की संभावनाएं आदि। मॉरिशस जल्द ही ज्वाइंट कमीशन की 14वीं बैठक की मेजबानी करेगा। जल्द ही ज्वाइंट कमीशन की 14वीं बैठक मॉरिशस में लगेगी। इसके लिए हम एक तारीख तय करेंगे।

0: साथ ही मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने मॉरिशस में सेशल्स के दूतावास की स्थापना करने का फैसला लिया है और यहाँ भी हमारा दूतावास खुलेगा। इस बैठक के अंतर्गत पिछले मार्च महीने में मॉरिशस और सेशल्स के बीच तय हुए 7 प्रोटोकॉल समझौतों पर और बातचीत के स्तर की संधियों पर भी गौर किया गया, ऐसा सहयोग जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो।
1: और कल रात सेशल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्टार्लिनीते में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। मंच पर पैट्रिक एमिनी के साथ उनके मेहमान श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नवीन रामगुलाम सहित अन्य लोग मौजूद थे। सेशल्स के राष्ट्रपति ने उस इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सराहना की जिसने 29 जून 1976 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से उनके देश को प्रगति करने में सक्षम बनाया है। और इस बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कुछ शब्द बयां किए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: जब मैं भारत की औपचारिक यात्रा पर गया था तब हम कुछ सहायता योजनाओं पर सहमत हुए थे। अब भारत ने इस लाइन ऑफ क्रेडिट को रेटिफाई किया है। इससे हमें विकास कार्यों के लिए करीब 20.5 बिलियन रुपए की रकम प्राप्त होगी। ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके लिए इस पर हमें एक हल्का इंटरेस्ट चुकाना होगा, लेकिन इससे हमें मूल ढांचा कार्यों में सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैंने मोदी जी का आभार प्रकट किया और साथ ही हमने खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। ईंधन सप्लाई को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर होगा। हम सेशल्स के काफी करीब हैं, हमारी संस्कृतियाँ क्रियोल भाषा आदि समान हैं तथा सचिव सागर रामगुलाम और सर जेम्स मानचाम के जमाने से दोनों देशों के बीच अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं। जब मुझे आमंत्रण मिला तो मैंने यह आश्वस्त किया कि मैं यहाँ जरूर आऊँ जिससे सेशल्स और मॉरिशस के संबंध और मजबूत हो।
1: अन्य खबरों में जब्ती का लेखा जोखा, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा। ये पहली बार है जब आजसू के अधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया है और अपने रणनीतिक योजना 2026-2028 के संदर्भ में 2026 के पहले 6 महीनों के अपने परिणाम प्रस्तुत किए हैं। ओलों देवी सिंह को सुनते हैं।
2: D'une saisie presque 6 milliards roupies de cocaïne.
1: पिछले सालों की तुलना में गत साल को छोड़कर, क्योंकि पिछले साल ये 9 बिलियन रुपए था, अल्फा ब्रेवरी ने 6 बिलियन रुपए की लागत वाली कोकीन जब्त की थी। अतः पिछले साल के लिए 3 बिलियन रुपए का अनुमान लगा सकते हैं। आजसू ने 1,232 मामले की रिपोर्ट दर्ज की है और उसने 1,156 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,156 लोगों में उपभोक्ता, डीलर्स और तस्कर शामिल है। पुलिस के स्तर पर अगर ये शब्द सुर्खियाँ बटोर रहा है तो ये बुरी भावना से नहीं किया गया है। बॉ काउंसिल के स्तर पर ये प्रतिबद्धता ली जा रही है कि हम ये शब्द हटाएंगे। फिर आजसू के स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। ये किसी पेशे पर वार करना नहीं था, क्योंकि पुलिस फोर्स विशेषकर आजसू के सदस्यों को भली भांति मालूम है कि संविधान में धारा 10(2) के तहत ये प्रावधान है कि आपको अपने पसंद का एक वकील चुनने की अनुमति है।
2: Au courant des dispositions de la Constitution sous la section 10(2) qui dit vous avez le droit constitutionnel retenir service un avocat de votre choix.
1: ये बजट के प्रमुख उपायों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन 75,000 रुपये तक सीमित होगा। पात्रता मानदंड इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। लगभग 3,600 परिवार इस सहायता योजना से लाभान्वित होंगे। एमसीबी पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस के इस बैंकिंग ग्रुप ने अबिजान आइवरी कोस्ट में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहली स्टेज

0: से बढ़ते देश के प्रति मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जिसे आज अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक माना जाता है। अब्दुल बला की अदिति अवतार।
1: मॉरिशस कमर्शियल बैंक ने आधिकारिक तौर पर कोजीवो में एक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश सब सहारन अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। ये घोषणा मॉरिशस के सबसे बड़े बैंकिंग ग्रुप ने 18 जून को अबिजॉ में वहां के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेश मामलों की मंत्री नियाले काबा के साथ एक मुलाकात के बाद की। एमसीबी के लीगल हेड रोयल लॉम्बे कहते हैं, हमारा यहाँ भव्य स्वागत हुआ। हमने बहुत खुशी के साथ मंत्री को सूचना दी कि हम यहाँ बसने का आवेदन दे रहे हैं। अबिजॉ में मॉरिशस के ऑनरेरी कंसुल फ्रेडरिक लाम कहते हैं, ये कोजीवो की आर्थिक कारगरता विकसित करने के लिए मॉरिशन संस्थाओं पर गहरा विश्वास दर्शाता है। करीब 7% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ कोजीवो तेजी से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा 30 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में मॉरिशस की दिलचस्पी सिर्फ वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मॉरिशस की कई कंपनियां पहले से ही वहां अलग अलग क्षेत्रों में मौकों की तलाश कर रही हैं। मॉरिशस के लिए कोजीवो के ऑनरेरी कंसुल उदोराव अपाजी कहते हैं, टेरा ग्रुप ने कोजीवो में गन्ना पैदावार में बड़ा निवेश किया है। साथ ही आईबीएल ग्रुप मछली पैदावार और मवेशी पालन के साथ जुड़ा हुआ है। कोजीवो में बड़े पैमाने पर संसाधन मौजूद हैं, जिससे मॉरिशस को लाभ उठाना चाहिए। इस देश के पास पेट्रोल, गैस, कृषि सब हैं तथा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पादक है। दूसरी तरफ कोजीवो भी मॉरिशन विशेषज्ञता से फायदा उठा सकता है, क्योंकि मॉरिशस का भारत और चीन के साथ निर्यात की संधियां कायम हैं। इस तरह मॉरिशस कोजीवो से कोकोआ आयात करके चॉकलेट पैदावार कर सकता है। इसके अलावा कोजीवो एक बड़ा कॉटन उत्पादक भी है। पिछले मई महीने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने सहयोग और निवेश के नए मौकों की पहचान करने के लिए कोजीवो में एक बिजनेस मिशन का नेतृत्व किया था। इस यात्रा के दौरान शुरू हुई बातचीत अब दोनों देशों के बिजनेस ऑपरेटरों के बीच जारी है, जिसे मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बीच नई रणनीतिक साझेदारियों के नए आयाम खुल रहे हैं।
0: संसद के सामने हाथों में तख्तियां, नारे लगाते हुए और एक साथ उठती आवाजें इस गुरुवार श्रमिक संघों के प्लेटफॉर्म सड़कों पर उतरा, यानी आज, जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशन सुधार का विरोध करना था। विरोध का मुख्य कारण ये था कि इस प्रणाली को श्रमिकों के लिए बहुत बोझिल माना जा रहा है और इसमें किए गए बदलाव उनके अनुसार एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालते हैं। और अब फुटबॉल की बात करें तो इस विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा को एक साहसी दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराने के लिए आखिरी पलों तक इंतजार करना पड़ा। एक गोल बस एक ही, लेकिन ऐतिहासिक, जिसने कनाडा को अंतिम 16 में पहुंचा दिया। अजमल मोइटब, अरविंद बिसेसर।
2: ग्रुप स्टेज का राउंड लगभग 2 हफ्ते 3 दिन और साथ में लगभग 72 मैच खेले गए। अब से नॉकआउट राउंड शुरू हो गया है। सभी 32 टीमें क्वालिफाई हो गई हैं और राउंड ऑफ 32 का मुकाबला तय हो गया है। इस वर्ल्ड कप का पहला नॉकआउट मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच हुआ। मैच शुरू में सुस्त चाल से चल रहा था। दोनों टीमों को अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बन पाया। बढ़िया रक्षात्मक खेल को लेकर दक्षिण अफ्रीका टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कनाडा गेंद पर अपना कब्जा बनाए रख पाया, लेकिन आखिरी समय में जाके दक्षिण अफ्रीका टूट गया। इंजरी टाइम का दूसरा मिनट चल रहा था और कनाडा का खिलाड़ी स्टीफन उस्ताकुयो के शॉट पर ये गोल बनता है। कनाडा 1-0 से मैच जीत लेता है और राउंड ऑफ 16 विच एम द फिनाल में पहुंच गई ये टीम। ये एक ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन है। दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा खेला, लेकिन आक्रामक खेल की कमी थी, इस वजह से बाहर हो गई।
0: और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले लगातार जारी हैं, जिसमें आज रात और कल सुबह के लिए तीन बड़े मैच निर्धारित हैं। ब्राज़ील का मुकाबला जापान से, जर्मनी का सामना पराग्वे

0: से और अंत में नेदरलैंड्स की भिड़ंत मोरक्को से होगी।
1: राउंड ऑफ 32 का दूसरा मैच आज रात 9 बजे ब्राजील और जापान के बीच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम हमेशा अपने आक्रामक शैली, खेल में रचनात्मकता और किसी भी समय गति बढ़ाने की क्षमता से बहुत प्रसिद्ध है और उसका सामना है जापान से, जो मजबूत सामूहिक संगठन एवं अनुशासन और तेजी से ऊंचा दबाव बनाने की क्षमता रखने वाली टीम है। जर्मनी का मुकाबला रात के 12:30 पाराग्वे से होगा। द नेशनल मैनशाफ्ट कब्जा और तीव्रता पर आधारित खेल के साथ विश्व पटल पर अपना ऐतिहासिक दबदबा वापस पाने की कोशिश करेगी। उसके सामने है पाराग्वे की टीम, एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी जो दक्षिण अमरीकी जोन से आई हुई है और इस टीम को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ये टीम खाली जगह के बंद और सेट पीस पर पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अंत में सुबह 5:00 एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला है नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच। डच टीम में प्रतिभाशाली पीर ही है और संरचित खेल होता है। उस तरफ मोरक्को की टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ब्राजील को रोका पहले मैच में, उसके लिए इस टीम से बच के रहना होगा।
0: और शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि कल रात सेशल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्तालिनीते में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। रजनी बिकर।
2: 29 जून 1974 स्तालिनीते में भारी भीड़, माहे के रहने वाले सेशल्स वासी और साथ में टापुओं के भी निवासी मौजूद। गणराज्य के राष्ट्रपति और उनके मेहमानों के सामने एकत्र हुए झंडे को फहराते हुए देखने के लिए। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के लिए राष्ट्रीय परेड की शुरुआत सेशल्स और विदेश से आए कुछ लोगों के पैराशूट से उतरने के साथ हुई। स्थल पर परेड की झलक, द्वीप समूह की ताकत और साथ में मित्र देशों की इकाइयां भी, जैसे चीन, भारत, मॉरिशस और रूस। एक भव्य परेड का आयोजन, भीड़ और यहां तक कि महानुभावों ने भी अभिवादन किया। राष्ट्रपति पत्रिके मिनी ने मजबूती, एकता, भाईचारे और सहयोग की सराहना की, जिनकी बदौलत उसकी जनता एक अलग पहचान बना पाई। एक ऐसा देश बना सेशल्स जो एक बेहतर भविष्य के लिए अभी भी कार्यरत है।
3: 50 years ago, Seychelles took its rightful place among the community of nations as a sovereign and independent republic. Since then, we have remained steadfast in our commitment to friendship, mutual respect, peaceful coexistence, and constructive international cooperation. The progress we celebrate today has been made possible through the resilience and determination of the Seychelles people, strengthened by the friendship, solidarity, and cooperation of our international partners. For this, we express our sincere gratitude.
2: देश के नौजवानों की ओर से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत, जिसमें सेशल्स राष्ट्र के निर्माण की झलक मिली।
0: और ये बजट के प्रमुख कदमों में से एक है, जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन ₹75,000 तक सीमित होगा। माधवी जागवनाथ, अदिति अवतार।
4: घरों की छतों पर सोलर पैनल बिठाने का प्रोग्राम इस साल एक नया आयाम ले रहा है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत योग्य परिवारों को पैनल खरीदने की लागत का 25% भाग सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। ये रकम हर इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ₹75,000 तक हो सकती है।
5: Le gouvernement in vine avec comme si vous donnez un boost à ce projet là pour donner 75,000 roupies. Right. À chaque famille qui est intéressée, mettez un système solaire, l'eau de la maison. Nous, au niveau du CEB, nous faisons le nécessaire pour...

0: ou l'installation de le système, techniquement l'application jusqu'à le commissioning, mais pour le grant, c'est la DBM qui occupe la partie grant. Alors, il y a une roadmap qui nous met en place, qui nous peut finaliser, qui nous pouvait avec une étape à suivre, qui nous permet le nouveau website et nous pouvons expliquer le client quand il vient d'un customer service à la qui man étape il besoin faire pour lui capable bénéficier de sa grant.
1: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सीबी रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए एक समर्पित विभाग कायम करेगा।
0: ici dans nous y a à peu près un à deux semaines maximum nous besoin de finaliser tout inclus et non ce qu'on appelle le eligible customer. Alors le eligible customer, vous pensez il peut être une grille de revenus qui peut être déterminée que le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie et du Travail.
1: इस सहायता योजना के लिए बजट में लगभग 270 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस साल करीब 3,600 परिवारों को फायदा होगा।
2: विदेश की खबरों में वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अब तक कम से कम 1,450 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी सहायता और राहत कर्मियों की बढ़ती संख्या आपातकालीन कार्यबल को मजबूत करेगी और मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने के अनुसार यूरोप में अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव सैकड़ों लोगों की असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सुमेरा अकबर अली।
3: चेक रिपब्लिक ने इतवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने कहा कि 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पोलैंड में भी तापमान सबसे उच्च रहा। रोम में सड़कों पर स्मॉग टैग समाधान ढूंढे गए ताकि लोगों को धूप और इस तेज गर्मी से राहत मिले। वहां लगातार दूसरे दिन के लिए 41.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूरोप भर में एक ऐसा भी देश नहीं है जो मौसम गर्मा के असरात से दरकिनार है। बुजुर्गों को जितना तक हो सके घर पर ही रहने को कहा जा रहा है। यूके में दो दिनों के लिए मजबूरन स्कूली छुट्टियां भी दी गईं। कुछ मुल्कों में खास स्मार्ट घड़ियों से अधिकारी निगरानी रख रहे हैं।
2: और अब अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल रजनी बीकर के साथ।
4: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और वर्षा होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे और विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी। दिन के दौरान बाद में मौसम में सुधार आने लगेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:46 पर सूर्योदय।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। राय रोड सुयाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद हुसैनी, जो उस्ताद गोरा भाई नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात आठ बजे उनके घर रारोद सुयाक से उठाकर सुयाक का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की कुमारी पद्मावती बसावा, जो लीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है।

उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. रॉयल रोड आल्बियों में 92 साल की 92 years old की श्रीमती अहिल्या काली, जो शादो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे सुचित दुखिया के घर रॉयल रोड आल्बियों से उठाकर मेजिन बॉम्बू की

0: tomorrow at 10:30. Ra Road Puzduflak mein 71 saal ke 71 years old ke Shri Dhanraj Boiro जो कुमार नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुखमीन भोइरो के घर रा रोड पुजदुफ्लाक से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 एएम डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले में 88 साल के 88 इयर्स ओल्ड के श्री राणा प्रताप ताकुरी जो राणा नाम से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले बैंक ऑफ मॉरिशस के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 3:45 बजे उनके घर डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले से उठाकर तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3:15 PM ट्रेबों नंबर दो वाकवा में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति सवाराम जो दादी लोंगान नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थ कल दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रेमपथ चमन के घर थ्रेबों नंबर दो वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM स्कूल लेन लागोजा में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री सेलिया सनासी जग्या जो रामू नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल सुबह 8:30 बजे उनके घर स्कूल लेन लागोजा से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 8:30 सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मारी देजरे द्वारिका जो पुम नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके पति श्री ईश्वरलाल द्वारिका के घर सिबरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अलीब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून प्रेमियन शुमें मारीजानी रोजबेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धर्मावती रामदीन पैदाइशी नाम राउ और जो मामा अनिल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थ कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे सुनील रामदीन के घर प्रेमियन शुमें मारीजानी रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM रा रोड मोन्सिडा में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति बायलक्सिमो पैदाइशी नाम तानु और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थ कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे आत्माराम लक्सिमो के घर रा रोड मोन्सिडा से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 30 जून 2024 दिन के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्लेनवेथ और आसपास के इलाकों में रू अली, रू कलकत्ता, रू इद्रीस गुमानी और इमाम बाकस सबदार में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

नहीं सो। सोमवार 29 जून घड़ी मिला लीजिए शाम के ठीक 6:30 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ देने के लिए हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं नई सोच और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को लेकर। अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। चलिए शाम का वक्त है, आज ठंड है, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। इस ओर आप बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, दिन कैसे बीता और अभी फैमिली के साथ उम्मीद करते हैं अच्छा टाइम बिता रहे होंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो शुक्रिया आप सबके प्यार भरे साथ के लिए। अभी से लेकर 7 बजे तक कुछ खूबसूरत गाने जो है आपके लिए हम चलाएंगे इन नई सोच और फिर 7 से 9 बजे के बीच दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे जहाँ पर रोमांटिक गाने तराने आपके एंटरटेनमेंट के लिए चलते हैं। तो चलिए नई सोच इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने फिल्म के इस गाने के साथ।

यस, जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जो है बस आज ही में है। लेकिन कभी कभार हम अपनी सोच की वजह से, हम अपनी हरकतों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से अपने आज को जाने अनजाने में बिगाड़ देते हैं और हालात हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं। काश के हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिले, क्योंकि कभी कभार हम, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जानबूझकर तो गलती नहीं करता है ना, हो जाती है गलती, कभी समझ नहीं पाते हैं, कभी चीज़ों को उस तरह से देख नहीं पाते हैं जैसे देखना चाहिए। कभी कभी लगता है कि कोई हो ना जो आपको सभी बातों को समझाए, आपके पास बैठकर आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ज़िंदगी में हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी सक्सेस क्यों ना हासिल कर ले, एक समय ऐसा आता है कि अकेलापन महसूस होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में अपनों का साथ नहीं हो तो ये ज़िंदगी को काटना और भी मुश्किल हो जाता है, तब गलतियां पर गलतियां हम करते बैठते हैं। तो बस कोई ऐसा हो जो आपके साथ में हो, आपका साथ दे, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर अपने नहीं होते हैं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए, अगर आपके पास आपके अपने हैं तो उन्हें बनाए रखें प्यार से, अपनापन देकर, रिस्पेक्ट देकर, क्योंकि ये अपने ही होते हैं जो ज़िंदगी को हसीन बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, यादगार बनाते हैं।

चलिए इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं इस अगले गाने की ओर, जिसके साथ नई सोच ये जो सेगमेंट है ये खत्म हो जाएगा और 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। दिलों की आवाज़ ये जो प्रोग्राम है चलेगा रात के 9 बजे तक।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: सोमवार 29th ऑफ जून शाम के 7 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं, आप सभी का स्वागत है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन और दिलों की आवाज़। इस प्रोग्राम की शुरुआत यहां से होती है, तो चलिए खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है शुरू होने वाला है वो भी स्पेसिफिकली रोमांटिक गाने। जी हाँ, स्पेशली रोमांटिक गाने आपके लिए हम चलाएँगे, आपके नाम हम डेडिकेट करेंगे। और जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमेशा हमें मिलता है। इस शाम को चलिए साथ मिलकर यादगार बनाते हैं, मेमोरेबल बनाते हैं। खूबसूरत गाने तराने आपके लिए बेशक हम चलाने वाले हैं। देर किस बात की, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑन 4028070 और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250600 पर। साथ ही थोड़ी देर में हम अपने टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, साथ ज़रूर दीजिएगा हमारा। अभी के लिए चांदनी फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए अभी के लिए तो आपके मैसेजेस है जो यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पर जो है चले आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, थोड़ी देर में आपके डेडिकेशंस को हम इंक्लूड करेंगे। और नॉट टू फॉरगेट 5250620 है नंबर हमारा। थोड़ी देर पहले आशा जानू जी हमारे साथ जुड़ी थी जब हमने जो है आर डी

साहब पर आपके सितारे ये प्रोग्राम किया था। थैंक यू सो मच आशा जी उन गानों को पसंद करने के लिए। 1942 का एक गाना हमने ज़रूर चलाया था। अभी अगर हमें मौका मिला थोड़ी देर में तो हम ज़रूर इस गाने को चलाने की कोशिश करेंगे जो आपने कहा है। गाना जाएगा आपके मामा कुमारी के नाम सभी जानू फैमिलीज़ के लिए, खासकर आशा जी आपके लिए भी। तो चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़, ये जो प्रोग्राम है 9 बजे तक चलने वाला है, अपने दिल की जो आवाज़ है अपने मैसेजेस के ज़रिए हम तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया।

0: दिलों की आवाज।
1: अजी आपकी दिल की आवाज हम कैसे नहीं सुने भला, इतने प्यार से जो है आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस हमें मिलते हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ स्वेनल जुड़ी हुई है, कह रही है हैवी रेन इन ब्रह्मस्थान। चलिए आप अपना ख्याल रखें, बरसाती मौसम है, कुछ खूबसूरत गाना यहाँ पर आपने डेडिकेट किया है। गाना है सैनिक फिल्म का, बाबुल का घर। ओके, गाना जाता है टू ऑल वेडेड ब्राइड। ऑल राइट, ऐसे तो शादियों का सीज़न चल रहा है, चलिए उन सभी कपल्स के नाम जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं। साथ ही गाना जाता है भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्या, तिलक पाबलीस के लिए और खासकर अंतिश रामशरण आपके लिए जो इस समय स्विट्जरलैंड से हमें सुन रहे हैं।

0: चलिए अभी अभी तो हमारी मुलाकात शुरू हुई है, जुदाई के बाद अभी से बिल्कुल नहीं। रात के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है।
1: दिलों की आवाज़,
0: यस ये है दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो सो मच। इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, सो आप वहाँ पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। भूलेगा नहीं, हमारे इस पेज को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और चलिए, बहुत सारे यहाँ पर फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी के लिए अगला जो तराना है, दीवाना फिल्म का गाना है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। और ये गाना जाता है सुदेवी जी आपके नाम, इस समय वाकवा से हमारा साथ दे रही है। और गाना जाता है आपकी दीदी लालिता के लिए, सभी कुशल फैमिलीज के नाम, भैया आत्माराम, वी हैव दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालिंगा से वी हैव याशना, नीरज, सभी राम रतन परिवार के नाम, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू वेरी मच। और यही गाना आपके नाम भी सुदेवी जी हम करते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वी हैव प्रिंसेस, वी हैव शर्मिला बुधन जी, विकी, रूबा, पारा, रमेश, एंजल जी हमारे साथ हैं, इलियास भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी हैव हेंजी एंड सपना चौधरी जी, कैसी है आप? आई होप आप ठीक हैं। एंजल मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक हैं। रशीद जी आपका भी वेलकम हम करते हैं। शर्मिला बुधन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हेलो संजय जी, गुड इवनिंग सैम, आप कैसे हैं? एजे हाई, एजे हाउ आर यू? दीप्ति गंदावरी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है और हमारा साथ दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अगला गाना जो है एंजल की ओर से जाता है उनके लवली बेटे सोहल के लिए। और यही गाना सलूजा की ओर से सभी मथुरा परिवार के नाम।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: की आवाज की आवाज की आवाज
1: प्यार करने के लिए अगर इतना सोचना पड़े तो फिर पता नहीं हम क्या कहे प्यार तो प्यार होता है, बस हो जाता है, ना सोचने का वक्त मिलता है ना समझने का वक्त मिलता है। जो दिल को अच्छा लगता है उन सभी चीज़ों से प्यार होता है। और चलिए यहाँ पर आपकी जो फरमाइशें हैं, आपकी जो डेडिकेशंस है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन जी हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो गुलशन जी, कैसे हैं आप? गाना जाता है लवली एंजल आयशा के नाम। मामा है प्रभा, साथ में है दीक्षिता, सभी बोला फैमिलीज के नाम। आर जी हंसनी के लिए बिल्कुल चलाएंगे। और यही गाना जाता है यहाँ पर परी आपके लिए एजे की ओर से। ओके, एजे ने कहा परी के लिए गाना चला दो, तो चलिए। और यही गाना जाता है यश आपके नाम, इंग्लैंड से साथ दे रहे हैं। दीप्ति जी शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव मीना, वी हैव शैलेंद्र जी, एमडी शरीफ जी, आपने जो गाना मांगा है, मौका मिला तो थोड़ी देर में उसे हम ज़रूर चलाएंगे आपके लिए। ऑलराइट, वी हैव अभी, सबीना, सुबीता, प्रिंसेस किसी को मिस कर रही हैं, तो चलिए आपको जिनकी याद आ रही है उनके नाम इस गाने को करते हैं। निज़ाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहजाद जी भी साथ दे रहे हैं। ट्रियोले से एंजल हमारे साथ जुड़ी है, गाना जाता है आपकी पूरी फैमिली के लिए। हॉलैंड से गीता जी हमारा साथ दे रही है। वी हैव निशा, वी हैव प्रतिमा जी, और यूके से शागिर जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। सो प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म का ये तराना है, साधना सरगम उदित नारायण जी की आवाज़ों में। और यहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250620 पर।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज़, इस समय गिरीश हरलोल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। ऑलराइट, वी हैव साजन चले ससुराल फिल्म का ये तराना है, खासकर आपके नाम कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज़ों में, और आपके सभी फैमिली के लिए यहाँ पर रूपचंद जी हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव नाजिमा श्रद सनी एम डी एंजल मिंटा जी, जो गाना आपने मांगा प्रेम रोग का हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, उसे हम दोबारा नहीं चला पाएंगे, सो जो अगला तराना है आपके लिए हम करते हैं, आप जिनको मिस कर रही है उनके नाम करते हैं। ऑलराइट, अविसान जी आपने लकी अली का कोई गाना मांगा है, अब मौका मिला तो इसे हम ज़रूर चलाएंगे। स्मिता, अगला तराना आपकी ओर से आपके हस्बैंड के नाम, ओके। अनीता रामदानी जी, शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। वी हैव सूर्या जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। श्यामा जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गलत 2.0 ये क्या है मैसेज, मैं समझ नहीं पाई एजे इस मैसेज को। मालिनी जी, कैसी है आप, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल अनीता जी, जो गाना आपने मांगा है इसे हम थोड़ी देर में ज़रूर चलाएँगे। शाहिद इकबाल खान पाकिस्तान से इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपके इस साथ के लिए जो हमें मिल रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, नीलिमा जी आपने लिखा कि जो गाना चल रहा था आपके डैड का फेवरेट सॉन्ग है, तो आप उनको मिस कर रही हैं। ऑलराइट, अपने जो दूर चले जाते हैं उनकी याद तो आती है, तो चलिए इसी गाने के ज़रिए यही गाना आपके और आपके डैड के नाम हम डेडिकेट करते हैं। ओके चालिनी जी, गाना आपके नाम और आपके हबी रोशन के नाम। ऑलराइट, और भूलिएगा नहीं बहुत सारे जो है हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।

प्रतिमा दुखित राम जी हमारा साथ दे रही है. गाना जाता है हस्बैंड कृष्ण के लिए, माँ आपकी ममा के लिए, आपकी नीस रिया के लिए. प्लान माइयों से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच. यस मिंटा जी, आपका मैसेज हमें मिला, थैंक यू सो मच. वी हैव एस बी, हेलो सुमी जी, प्लीज़ प्ले. ओके, मौका मिला तो बेबी जान जी इस गाने को हम ज़रूर चलाएंगे. इंदिरा जी नमस्ते आपको भी. तो चलिए बढ़ते हैं इस गाने की ओर.

0: की आवाज,
1: यकीनन इन गानों से प्यार कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं, तो 90s के कुछ तराने ऐसे हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं। तो चलिए, ऐसा ही कोई स्पेशल सा गाना आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या टिकटॉक के जरिए समय हम लाइव है तो यहाँ पर भी आप अपने लाइव डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से इस समय साथ दे रही हैं, कह रही कि काफ़ी ठंड है वहाँ पर। तो चलिए, अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, आपकी पूरी फैमिली के लिए। साजन फिल्म का ये तराना है, तू शायर है मैं तेरी शायरी। यही गाना रानी जूसरी जी आपके लिए भी, इंदिरा जी आपके नाम, प्रकाश जी आपके लिए, रेखा रामा जी हमारा साथ दे रही है, कनाडा से सीताराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वी हैव SB, प्रकाश, उषा, उज्जवल, सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। स्वीटी है, वी हैव स्वीटी आपकी ओर से गाना जाता है, सिस्टर लीना के नाम, आपकी मामा रोजबल से आप सभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संदीप जी आपने कहा कुमार सानू का कोई गाना, ऐसे तो ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है काफ़ी सारे गाने कुमार सानू के हमने चला दिए हैं। उम्मीद करते थोड़ी देर में अगर मौका मिला तो एक और गाना उनका ज़रूर चलाएँगे आपके लिए। पैमला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। क्वेश्चन हमारा साथ दे रहे हैं पुद्रदोर विलाज से, आपका वेलकम है।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: और चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज इन खूबसूरत गाने को सुनते सुनते कब हमारा फर्स्ट आवर खत्म हो गया पता ही नहीं चला है ना। चलिए रात के 8 बज चुके हैं, आज है मंडे 29th ऑफ जून। देखते ही देखते इस साल के 6 महीने खत्म होने को चले। अभी सोचो तो मानो अभी अभी हमने इस 2026 साल की शुरुआत की थी और एक दिन में जो है ये महीना ख़त्म हो जाएगा और जुलाई महीने में हम कदम रखेंगे। और चलिए यहाँ पर अभी के लिए हमने सेकेंड आवर में कदम रख लिया है और एक

घंटा है हमारे पास आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, आप लोगों के डेडिकेशंस को यहाँ पर शामिल करने के लिए, आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी अपनी जो फरमाइशें हैं हम तक पहुँचाइए। ऑलराइट, वी हैव जया जी, अगला गाना आपके नाम। इलियाना हमारा साथ दे रही है, हॉलैंड से मनोज है, वी हैव खतीबा, अलीशा, मिंटा जी, नीरज जी, अगला गाना आपकी ओर से दिव्या के नाम जाता है। कवि किशन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड वी हैव दौलत तरन जी जो बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। आशा बी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए भी। पूनम जी, अगला गाना आपके नाम, इस समय बॉम्बू से आप हमारा साथ दे रही है। श्रद, यू आर मोस्ट वेलकम। अलीशा, अगला गाना आपके हस्बैंड साइलेश के लिए, ओके। थैंक यू चालिनी जी आपके मैसेज के लिए, और आपका गाना हमने ज़रूर चलाया, आपके हस्बैंड के नाम डेडिकेट किया। नमस्ते रेशमा जी, कैसी हैं आप, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्ष, अगला गाना जाता है आपके नाम, आपकी बेटी इलियाना के नाम और आपके हस्बैंड मानव के लिए। कौतिक सुबीता जी, नेक्स्ट सॉन्ग आपके सभी फैमिली के नाम। सरगम जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। प्रीति जी, आप मॉरिशस से साथ दे रही हैं, ऑलराइट। रोज़, हेलो रोज़। संगीता जी, हेलो, उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं। और चलिए, कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये जो तराना है चल पड़ा है आप सभी के नाम।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: चलिए आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं आप, शुक्रिया इसके लिए। देखते ही देखते रात के 8:10 ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। आपके इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए, आपके डेडिकेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, अगला गाना मिंटा जी आपके नाम जाता है, आप जिनको मिस कर रही है उनके नाम जाता है। हिना फिल्म का ये तराना। वी हैव कायरा, कानन, संगीता, वी हैव रचना, आपकी ओर से ये गाना आपके हबी सतीश के नाम, साथ में कौशिक है और आपकी डॉटर इन लॉ वैष्णवी है। इटली से जेना हमारे साथ जुड़ी हुई है, संजीव कुमार जी इंडिया से साथ दे रहे हैं। प्रतिमा जी अगला गाना रोजबेल की आपकी आंटी गीता और आपके अंकल के लिए। उषा जी हमारा साथ दे रही है, उषा जी अगला गाना आपके हस्बैंड के लिए। ऑलराइट, लेडी जागवा आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया तो अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं। एंड देन वी हैव माधुरी जी जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ी है, तो थैंक यू सो मच माधुरी जी। नेहा जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। क्रेजी, मैं बिल्कुल ठीक।

वो क्रेजी आप कैसे हैं सूरज जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं ट्रियोले से और सिलेक्शन को पसंद कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कोतेज से मिंटा जी हमारे साथ जुड़ी है और हीना फिल्म का गाना चल पड़ा अनीता जी मोस्ट वेलकम

पिछले हीना फिल्म का ये गाना खासकर मिंटा जी आपके लिए हमने चलाया। यस, दिस इज योर दिलों की आवाज़। रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम जो है चलता है हर रोज शाम के 7 से रात के 9 बजे के बीच, जहाँ पर आपके प्यारे प्यारे डेडिकेशन हम इंक्लूड करते हैं, आपकी फरमाइशों को पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की। और चलिए, यहाँ पर चंदनी पुरुषोत्तम जी ब्रिटानिया से हमारा साथ दे रही है। कह रही कल 30th of June को उनके डियर हबी प्रीतम का बर्थडे है। सो प्रीतम जी, आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपकी वाइफ चंदनी जी की ओर से। शी इज़ विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी एंड सक्सेस। पूरे पुरुषोत्तम परिवार की ओर से प्रीतम जी आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और जितने भी हमारे लिसनर्स, जितने भी हमारे फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे। यस, बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, और जब कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो और भी खुशी होती है ना। चलिए, यहाँ पर अगला गाना आश आपके नाम, आपकी प्यारी बेटी 4 साल की है विदिशा, जो इस समय हमें सुन रही है। हेलो विदिशा, कैसी है आप? दिनेश गोपी जी नमस्ते आपको। ज्योति जी हमारा साथ दे रही है, वो अपनी लेट मामा शांता को याद कर रही है।

ही हैं। साथ में है आरती, प्रवेश, प्रिया, आप सबकी ओर से आपके मामा के नाम हम अगले गाने को डेडिकेट करेंगे। शीतल जी हमारे साथ जुड़ी है, रचना है, वी हैव निशी, सुनीता, देन वी हैव डेजी। ऑलराइट डेजी जी, जो गाना आपने कहा इसे हम चलाने की कोशिश करेंगे थोड़ी ही देर में। गायत्री जी अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। और सबीना जी अगला गाना आपकी तीन बेटियों के नाम, सोनाली है, शालिनी है, श्रीना है, सभी बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं। रविंद्र कामित जी आपका भी स्वागत है, थैंक यू माधुरी जी इतने सारे प्यार के लिए इतना प्यार बरसाने के लिए। बेबे बंधु कैसे है जी, ठीक है? बिल्कुल डेजी जी, आपने जो गाना कहा थोड़ी देर में हम ज़रूर इसे चलाने वाले हैं। और अगला ये तराना यास्मिन जी आपके नाम का ट्रबोन से साथ दे रही है, डिनर करते करते हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच। बुना पेची आपको और आपकी बेटी हाजरा भी हमारा साथ दे रही है। सीता जी कैसे हैं आप, राम राम आपको। लीना जी नमस्ते,

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: चलिए दिलों की आवाज़ है और यहाँ पर जो है आपका प्यार हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू ज्ञान जी आपके मैसेज के लिए। 4 से 6 के बीच में जो आर डी बर्मन जी पर प्रोग्राम हमने किया था आपको बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। और अभी जो गाना आपने मांगा है इसे थोड़ी देर में मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। ऐसे ये जो अभी गाना हम चलाने वाले हैं ज्ञान जी, इसे आपके नाम हम करते हैं, आपकी वाइफ सबिता के नाम, साथ में आपके सिस्टर इन लॉ है गीता, वी हैव संजीव, सुनील, रानी, शीतल, सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। और हमारे RM3 के सभी लिसनर्स के नाम, लिसनर्स के साथ साथ हमारे ढेर सारे फॉलोअर्स भी है जो इस समय हमारे साथ हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव है, सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेजी जी अगला गाना आपकी ओर से आपके हबी के लिए, प्रिंसेस वी हैव सुमन, लीना अगला गाना आपकी ओर से आहाना के नाम, राणा जी शुक्रिया साथ देने के लिए, मिस्टर राम आप भी हमारे साथ जुड़े हैं बेल्जियम से, प्रेमिला जी साथ दे रही हैं, शर्मिला जी भी हमारे साथ जुड़ी है, रतीश आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे रतीश, आपको स्पेशल बर्थडे विश आया है आपके नाम वॉरियर की ओर से, ऑलराइट। यहाँ पर रोशनी हमारा साथ दे रही है, नमस्ते दीदी कैसी है आप, यजना, यजना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो चले लीना अगला गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड विनय के लिए, यास्मिन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आदाब यास्मिन जी कैसी है आप। ऑलराइट, पेज को लाइक करने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप पेज को ये कर पाएंगे। देन वी हैव ऑलराइट वॉरियर, इस गाने को हमने ऑलरेडी रातिश के नाम डेडिकेट कर दिया है, निष्ठा हमारा साथ दे रही है, ओ अखियों के झरोखों से ये गाना अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। थैंक यू जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं उसके लिए। और राइट यहाँ पर रोशनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, देन वी हैव चिराग जी, संगीता जी यही गाना आपके लिए भी जाता है, राजीव गंगाराम जी हेलो कैसे हैं आप।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: और चलिए यहाँ पर हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे फॉलोअर्स के साथ, ये दो घंटों का जो दिलों की आवाज़ का सफ़र होता है, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। आप लोगों से बातें करते करते, आप लोगों से इंटरेक्ट करते करते। और चलिए अगला गाना आयशा आपके नाम हम करते हैं, समीरा जी है आपकी पूरी फैमिली के लिए, नेहा हमारा साथ दे रही है, वी हैव एम डी अली, अनूप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगला गाना जो है आओ प्यार करे फिल्म का होगा, ये गाना जाएगा पूर्णिमा जी आपके नाम चांद से पर्दा कीजिए। और यहाँ पर इस समय जो है बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स और हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो अगला गाना आप सभी के नाम भी हम करते हैं। दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुल्ताना जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट गाना बेटी सोनाली शालिनी और श्रीना के नाम और साथ ही आपके हस्बैंड के लिए, हेलो दिलीप कुमार जी कैसे हैं। और राइट मिंटा जी लिखती है कि दिव्या भारती उनकी भी पसंदीदा एक्ट्रेस है, ओके। कैन यू प्लीज़ प्ले अ ओल्ड सॉन्ग रफ़ी साहब, केशवर कुमार, ओके। ऐसे तो इस दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में पुराने गाने हम नहीं चलाते हैं,

और यहाँ पर चले यही गाना जाएगा आपके नाम भी सबीना जी, थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। और ये गाना चल पड़ा आओ प्यार करें फिल्म से लिया गया। थोड़ी देर पहले किसी ने हमसे कहा था एक गाना अगर कुमार सानू जी की आवाज़ में हो जाए तो ये गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में है। आपके नाम हम करते हैं

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। तो चलिए एक बार फिर से जितने भी हमारे लिसनर्स, जितने भी हमारे फॉलोअर्स, आप या आपके फैमिली मेंबर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको हमारी पूरी टीम की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर सिस्टर उर्वशी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, बेस्ट विशेज फ्रॉम पति विनेश। बेटा है किहान, सासुमा है सावित्री, जीजू है विक्रम, साथ में भाभिया है प्रीति, पूनम, निष्ठा, नेफ्यूज है अभिषय, अभिनव, वैष्णवी, आनिया, दिविष्टि, मामा है प्रीति, पापा है कृष, बहन है विष्णी, भाई है आकाश, चेतन, सभी मनसुख परिवार की ओर से, सभी महेश परिवार की ओर से जो बॉम्बू से साथ दे रहे हैं। ये अगला गाना उनके नाम हम करेंगे। और राइट, यहाँ पर बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है। रिहाना से, रिहाना हमारा साथ दे रही है फिनिक्स से, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे फॉलोअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी धन्यवाद आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। रवि जी हमारा साथ दे रहे हैं, रुबेया, हेलो, यस, प्रवीण जी आपके भी साथ के लिए शुक्रिया, राइना जी धन्यवाद। अगला गाना जाता है माया के नाम, जो बबासिया से हमारे साथ जुड़ी है। माया जी ये गाना आपके नाम रुबेया की ओर से। शिल्पा पोटलू इससे हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर अ सॉन्ग ऑफ शम्मी कपूर फॉर माय पेरेंट्स, ऐसे तो ये पुराने गानों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कभी दिन के वक्त सुहाना सफ़र करते हुए मौका मिला तो ज़रूर हम चलाएंगे। ऑल राइट प्रीति, नमस्ते प्रीति। नूरेदीन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर इस गाने की ओर हम बढ़ते हैं।

0: दिलों की आवाज
1: पिछले इसी के साथ दिलों की आवाज के इस प्रोग्राम के अंत तक हम लगभग आ गए हैं। 6:30 बजे से अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, गानों को पसंद किया, आपके इतने सारे डेडिकेशन, आपकी फरमाइशें हमें मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाजायज फिल्म का ये गाना आप सबके नाम हम करते हैं। इसी के साथ समय हुआ है कि हम भी आपसे विदा ले, जल्द मिलने फिर लौटेंगे। रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, 9 बजे से जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे। तो आपके साथ के लिए शुक्रिया, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जल्द आपसे मिलने हम फिर आएंगे।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: भोजपुरी के सवाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते हम के सब श्रोता लोग के अभी 9:01 होलवा और हमने के है मुलाकात भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में शुरू हुआ था। भोजपुरी तड़का हर रोज नियन हमने प्रस्तुत करब जा 11 बजे लेक तो हर खातिर लाइन खुलल बा 402-808-5 पर या फिर मैसेज भेजे खोज बजा तो 5251700-5 पर भेजा जा मैसेज और जहाँ हो बजा खुश रहिए जा हंसते रहिए जा मुस्कते रहिए जा मुस्कान जन बा बिखरते रहिए जा। हमने के कार्यक्रम में हमने लेके आए हैं जा जुन जुन गाना वो सब तो हमने तरह के सुनवावे के कोशिश करब जा बाकी सबसे ज़्यादा हमने तो हर पसंद के गाना सुनवाओ अब जा कौन गाना पसंद करेला ये हमने के बलिया जाए दोनों नंबर पर जन दहली जाता है लोग के और हमने के पहला गाना हमने वासुदेवा मोहन जी के गावल तो हर खातिर प्रस्तुत करब

रोहित जी मंगले हवन ने को गाना रुद्रदत्त पुकंजी के गावल रोहित जी रहे लन गांव बिले और ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर विशेष तौर पर अपन पत्नी करुणा जी खातिर

पानी के बुलबुला बिस्वजीत महेज जी के गावल महेज बिस्वजीत जी के गावल ये गाना हमने आत्माराम जी के पसंद पर बजाओ थे जा आत्माराम जी बेले ऐसे गाना मंगले वन अपन बहन ललिता छोटी प्रभावती और सुदेवी जी खातिर और बेले के पूरा स्नू परिवार खातिर।

पानी के बुलबुला के बाद चला हमने दादा दादी की कहानी सुनी जहाँ गासन सिंगारों जी की आवाज़ में और ये गाना हमने गायत्री जी खातिर बजवाओ थे जान वेल फ्रांस से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर मोतालों के भाभी शकुंतला खातिर और नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर।

चला व्यास पर सिनू जी के गावाली गीतवा सुनी जा, हमने फटफटवा में बैठ के गीतवा सुनी जा। फटफटवा वाला गाना हमने से मंगल वन रोजिल से लेखराज जी, लेखराज जी गाना अपन पत्नी शांति खातिर मंगल वन और बेटी सुविधा के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने विनोद सीधा जी के ठेला ठेली गाना सुनी जा और ये गाना हमने बजवाया जा ललिता जी खाते ललिता जी त्रियोले से मंगले हो एगो गाना और ये विनोद सीधा जी के गाना उनका नाम करत हैं जा और ललिता जी ये गाना अपन भाई सुरेश के नाम करत हवन भौजी शोभा और भतीजा प्रवेश के नाम उनकर बहन सुदेवी ज्ञानी खातिर प्रभावती जी छोटी जी आत्माराम जी और हरीश जी खातिर और छोटी जी खातिर स्पेशली गाना मंगत हवन बुध के उनकर जन्मदिन बात उनकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर शुभकामना हमके पूरा टीम बगल से और ललिता जी बगल से छोटी जी तोहर जन्मदिन पर तो

गाना चंचरा थवाजा संतोष महादेव जी के गावल गाना है। शांति जी त्याकूर से गाना मंगले हवन दागोचक के मराठी परिवार खातिर और अपा दागोचक के अपन भगीना ओम खातिर।

चलो जरा राजीव जी के पसंद के कुछ कुछ करेला सुनी जा और कुछ कुछ करेला ही गाना हमने विष्णु हरि जी के एक गावल सुनब जाए राजीव जी गाना मंगले हवन सुखी नाम से अपन पूरा परिवार खातिर खासतौर पर अपन दादी माँ खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चरसु देवी जी के नाम करी जा हमनी। अगला गाना ये गाना आदेश ठाकुर प्रसाद जी के कावल, और ये गाना हमने माफ करिया लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावल नया जमाना कर गाना है। और हमने ये गाना बजावा था जा वाकवा के सुदेवी जी बगल से, उनका पूरा परिवार खातिर, थयेले के दीदी ललिता खातिर और कुशल परिवार खातिर, आत्माराम भैया खातिर, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेंगा के रामरतन परिवार, राम गुलाम और कोवारू परिवार खातिर।

और अभी कुछ सुनीता नन कुछ के गावल के गावल गाना के बारे यार भाई गाना हमने बजवाया राजा राजन राजन लक्ष्मण जी खातिर लफलोगा के उनकर पत्नी माला खातिर उनकर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहन मानती खातिर और भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और उनकर साली जी खातिर

चढ़ल बा मड़मिट में गरम पानी गाना हमने संतोष महादेव जी की आवाज में सुनब जा अमृता जी के पसीन पर मौदार बे के अमृता जी मंगले होन गाना इतु परिवार खातिर सैंपिया के महादेव परिवार खातिर और माला बिहारी जी खातिर ओलिए के

विनु चिंतामणि जी के गावली गाना, विनु चिंतामणि जी कितना ममता भरल ये गाना गैले हवन, माता पिता पर कितना बातचीत कर ले हवन। सुनीता जी बगल से बजवाई ला जाए गाना, गौगुप की सुनीता जी बगल से, उनकर कुंगुमा के बहिन विमाला खतीर।

विक्रम कुलाचन जी की गावली गाना हमने के पूर्वज लोग के बात करत हवन और ई गाना हमने बजावत है जा लीलो जी खातिर लीलो जी रहलन पद पीमा और अपन तीन गो बहिन खातिर मंगले हवन संध्या विशालिनी और मेनका खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चल अभी कुछ सुने जा संतोष महादेव जी के और एको गाना, और ई गाना हमने रूपा जी खातिर बजावत है जा फौजीसा के रूपा जी गाना मंगले हुआ अपन सब पूरा परिवार खातिर और अपन सब सहेली लोग खातिर। चल सुनी जा हमने संतोष महादेव।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का में अभी कुछ हमने सरिता बुधुज के एल्बम के गाना सुनब जा गाना हमने रिफ्ली कॉन्फ्ला के अनीता जी के फरमाइश पर चलावत हैं जा उनका पूरा परिवार खातिर और उनका संगत या लोग खातिर

और चल हमने भाई अब्बू जी के पसंद के गाना सुनब जा अब्बू जी वाकवा से गाना मंगले हवन आफेज असलम आया जायान जाहिरा और काला चोती जी खातिर साथ में रईस जी खातिर और अपन सखतिया अप्पी और उनकर पत्नी जी खातिर संगे संगे गाना रकीबा जी खातिर मंगले हवन अब्बू जी उनकर खातिर दुआ करत हवन कि उनकर सेहत अच्छा रही

0: अभी जो गाना हम सुने थे जा महन हरपाल जी के गावल गाना और बीतल दिनवा के बारे में बोला थवन। ये बीतल दिनवा वाला गाना सुने खोजा थवन प्रियोले से हरी प्रेम बिहारी जी अपन सब बेटा लोग खातिर और पूरा परिवार खातिर मांगा थवन ये गाना।
1: शायर पे

विजय राव जी मेहनत पर बात करत हवन और मेहनत के एक किस्सा रवीन जी बंगले हवन पूरा सुखी परिवार खातिर

अभी हमने त्रिलोक गंगा जी के गावली को ऐसा गाना सुना अब जा जिनमें हमने के मोरिस देश के कितना पढ़ाई करल गलबार उनके देश के सुंदरता के

सुनीता ननको जी के गावली गाना के बाद चला सुनी जा अपनी विजेश गणपत जी के गावली गीत दोस्ती होला और दोस्ती हमने तनी भाई ते रहब जा चाहे हमने के कार्यक्रम के समय भी पूरा हो गल अभी 11 बजे होला बा और ये हमने के कार्यक्रम के समय तो पूरा हो ये जाए बस हमने की दोस्ती बरकरार रही यही उम्मीद के संगे संगे तोहला से विदा ले बाब अभी थोड़ा घड़ी में सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम और सुनहरे पल कार्यक्रम में सुनिया जा आज के सिलेक्ट करल पुराना गाना तो चला ये गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात भी समाप्त हो जाए आवतला फिर मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, किशोर दा और मुकेश दा के गीतों को दिल से पसंद करते हैं, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक खास तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है, इनमें मोहब्बत है, इनमें जज्बात है और जिंदगी के हर रंग छुपे हुए हैं। तो आज रेडियो मॉरिशस पर हम मिलकर सुनेंगे वो गीत जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में कुछ गिने चुने नगमे खासकर हमारे प्यारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

हम तो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचे वो जमाना जब कैसेट चलती थी, रेडियो पर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और हर गीत दिल में उतर जाता था। आज सुनहरे पल में हम उसी खूबसूरत दौर को फिर से जिंदा करेंगे, तो साथ बने रहिए और लुफ्त उठाइए इस संगीतमय सफर का किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपके प्यार और साथ के बिना ये महफिल अधूरी है। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों का, जज्बातों का और सुरों के सजी एक अनोखी महफिल। सुनहरे पल में आपका दिल से तो हमने स्वागत कर लिया, तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से खासकर आपके लिए सुनहरे पल में।

जिंदगी कितनी भी क्यों ना आगे बढ़ जाए मेरी जान, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें वापस लेके जाते हैं उन दिनों में जब जिंदगी थोड़ी सी मासूम थी, रिश्ते थोड़े से गहरे थे और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। आज सुनहरे पल में हम उन्हें यादों को फिर से महसूस करेंगे, तो बस दिल को हल्का कर लीजिए, मुस्कुराइए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर जहाँ पे हर एक गीत हमने कर दी है आपके नाम।

उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आपने आज दिल से एंजॉय किया। फिलहाल के लिए हमारा तो वक्त हो चला जाने का, आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बस ऐसे ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी, तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
1: तेरी बाहों में हम जीते मरते रहे यूं ही।

बोल संख तुम्हारी ऐसे तैसे ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर बंद कर रही नौटंकी। अरे मुंह का देख रहा है किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं बार बार कहकर बुलाओ बार बार और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार समझा के नहीं नहीं दही खींच के पन्हैया।